0: Yambem ibo hanbi singna khongba saxophone tabikre. Adomna thorum tabiriba se akasbani imphalni. Hauzi Delhi dagi rileda samacha pravad morning news amadi silong dagi rileda notice news mathang mathang oina taba fangbiragani.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं।

0: नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लालकिला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की

0: आधारशिला का निर्माण करें, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम लोग अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवम्बर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया।

0: किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिन्दुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा दो जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिन्दुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstelveen this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction.

ngaiko takisi tharum tabiriba marupsingu adongi marup harishin kaisamna taram nokchili khurumchili marupsing nongmagi mikup ama pukning pena nokthokpadi sirehida gumbani haini aihaki momon winok amana thawai nungairam daba kana gumba amasu awaba adubu mikup amatang oirabasu kokhan bangami maramasina marupsing aikhoi punna momon winok taminasi पाउजेल सिगरनेना लांथोकचेरी मखल मथेलगी लेचर सुरबा मणिपुरी एल्बम सेसिंग अहुंग मनाइबा पुनसिगी खोंचत्ता होंग लेरोय खन्ना नुंगशिखी बनि

0: 농기 신고인의 탓이고 싸기 거랑부도 내 학당 강우고이비마
1: 고이마
0: 농수라가 싸기 거랑부디 꼬니 누가 에코인의 까다이들 레이바 용수 때 그래 뭐이 빨래 이런 마바디 가르수 파가다만 빨리 더봐 이바두니 나대 아다 아담마 얌지에 내리바시 마코이긴 마뚱 인나라게 야오이베마 에콜수 살레시 봄포카이 기바 마팜도 에코이나 레이리바 마팜두다기 킬로미터 아니묵 라피 에이나 낭부 뽀라가 나붕부나 마쿳 빠이두나 징보이 빰보이 떠오라가 가다이다 살리바노 하이바 강다나 란지엘리
1: 이마
0: 람비 살링에다 농기암 깐나 소리 앙악바니 농기 이싱도 레깡 상바가 짝 많아이 우습무이
1: 이마
0: 이마나 캄바능 하우다나 나학나 아쪼트바 피다기 이싱도 쪽바가 하옹나 타키
2: 너미뚜다 에코이기 히로시마 하이바 마팜마시다 미리싱 훔부드라 해나 쿠덕트 시하이 아두가 시호우드나 아속바나 미리싱 마리푸롬 오이라가 꼬나 봉기 제나콘나 미락 아무기 마탁다 아무크소 핫크르바니
1: 바바
2: 에이 에코이트부 라이벅 파바드기 힝호리바니니
0: 너미뚜기 봉기 제나다 소이나이라바 미오이까 야마술레이리바니
2: 호이다 호이다 호이다
0: 레박시기 누피 Mama awi bi kaya nang asisu, mima na draba masawi na pokpagi, ning bakay na riba niya.
2: Yare se, mama nang ilan yu warido. Hey, sa isana, ngasi miha si mada chadu pag yu warido karam tau ba? Nati, noy bu, mijin chingsaw du karak tro.
1: Kare, Baba. Ay, koy miyam singdun hana yung na ba, lamjin su tanay.
2: Eh, karino ni hari si bu, adok yam wang mo singdu ba?
1: Aduda ne, Baba. Ay, na ihan hana singdun yaw eh. ngasi ay koy na lamjel cheli ba dum na chen bangam lagadi no bori ko school gi lakadawri baning tham sports ta ay koy bembu class na soidana mako oigani haina ozana thagala
2: aduni very good
1: aduga ni baba ay koy gi thauna lingjel adugi damak tani haiduna ozana chapor me amle raga singdon de sami nei ngo as khunung ai mani ngo
3: नखोई थौना फब म तो छुरगा ओजा याम न हरो मन खरो न सो पु लेरु रि नि ने
1: ओ ओ छु जागे आइ छु जागे
4: दम दो अदु दो जा अदु अदु
1: ओजा
3: अ हायु ने
1: हंद स्कूल गी एनिंग थाय स्पोर्ट्स ता आइ खोय बेम बुक क्लास न माइ थिया उब दो आइ न हो न ब वाल हो बने ने
3: ओ
1: मदु गी फोल न आइ खोय मे आ माइ थि ब फंग मि न ब याम नु गाइ ते ओजा
3: नो नो नो डोंट क्राई अदुन कपकनो
1: ओजा
3: नबोरी को स्कुन दतमलीबा बेम्बू क्लास के हंगचिंग ने कप पक्षते
1: ओजा
3: से ओजा वाइके स्कुन सिदन न कोइबो बेम्बू क्लास हारिब सि करि नो खंगबो करि गिनो ओजा वाइ बसि याम न कल्ली दना याम न सु उई
1: होय
3: पाक हेक टेक ते ओजा न हारिब सि यानिंग ब्रो
1: ओजा
5: ओजा हयिंदगी दि सुति थारगा नुंतिगे खै मयाम सानमिनरगे सदाको एखै सानब हौसिको
1: अदुदि तो मिया हयिंदगी सानबगी फिजोल पुनेरा आसिको
5: होय पुनेरा आसे
3: गुड अदु सेप्टेम्बर अक्टोबर गि निंथम स्पोर्ट्स त बेम्बुगि आंग छिन माइ पालक पदो या मोनिंग
1: ओजा
3: गुड लक
6: थैंक यू
1: ओजा अदुने इमा लाकदरी बनिंग थमगी स्पोर्ट्स ता ओजागिनिंग बथुंगनाबा एखै मैम होना दोइने
2: अदुने अदुने चाजिदी होना गदो बनि
1: बाबा
2: होना गदो बनि
0: इसागि माइसी गांगली गांगली तोइना
2: हा कै
0: कै करी तोरुरे करी करी सारुरे बेमा इसाबो
1: मयाम न जानरि बदुदगी हेना ते चापोम द चारकती इमा
2: हेरा हेरा नुसा मरक त चिंकारु बगी लमजिन चिरु बगी वादनो तोबो रमनिदा हाय नंग चाक सुसारा रोय हाय रमनिना चलो चलो चलो तुम जरूर चलो हे न वाला पुदे तुम फजरंग नि देसागी माईसिदी
1: अदुदी पापा ए तुम न
2: चलो चलो तुमरो
1: वारा मनी ए तुम बचांगे ओए सुमिनासाई
2: ओए सुमिनासाई
0: मुई पा
2: करी के दौरा मामा करी नो ने नंग इपा

0: हे तोम्बो, उहन बिरनु नहा किया की बसकता, ताहन बिरनु मालेम दा नहा की नमी, अमुक हन अमुक हन।
1: सदा को
0: इचे इचे ऐडी इचे लाख पो हाउद्रे
1: कई दे उरनिया इसे ही पचा अब हम सकले थोगा नंगना अदो इनाउ इसे इसे याम तनुशी कनाना तंबिरीनो
0: इचे ऐगी इसे इसे इसे ही नते दा तमलु बाहे बा मसलेते बोम ताबनु मिता ऐना वान था दुना ले रमी हाय बा मपम दुदा नो मलाइका लिंगे दा ऐगी वाकल दा जेन बाकु ओ युरु सुमाजी हाय बा वाई सिंग सेनिंग सिंग लक्के मधुने ऐने इसे यो इना गंग लिबा इचे वाई सिंग से ऐ काउ बसु गम गम दे गम गदा बसु मान दे चाक चारिंगे तुमलम दाई द स्वेग द निंग सिंग लक्के ओ जाना लाई रिक ताक निंगे द निंग सिंग लक तुना हाय दो की बसु यावे
1: चदाकु
0: मधु की द मक्ता लाई रिक तकोई जंग दे हाय दुना ओ जाना चाई की बसु ले
1: इंगुए नंगी से इसे ताब धन्य ऐ थी अकी बपुए
0: इचे
1: इंगु तो तू चुंगी
0: इचे
1: अदो कन्य तासु तानिंगे तारे कशु कब निंगे
0: इचे
1: करी किनो शिबो
0: इचे ना इबु नना ओमोए ननु शिबिबा अदु ना ओरंग कनी इचे
1: कंधे सताको ऐ थी नंग से पक्नुंग दनु शि
0: इचे
1: नंग नलाइंग संशिदा हेक लाख पनु मित्तगिने ऐ ख्वाई नक्नब मिशक अमोइन खल्ले
0: इचे
1: नते नंग नंग इसई से इंगोंता सुतम बिगेरा
0: अदुदि इचे इचे गी बानी हॉस्पिटल गी मफम अतै दसु इसई से सउसिरा
1: सउसे
0: इचे
1: सदाको
0: नंग से कया आद फखरबनो
1: इस
0: आइन हाय बसु लोइनिया बिको
1: मसिदिने मचे मन मनाउ गी दमकता तौफम थोकपने सदाको
0: इचे
1: इंगो नंग से ऐ गी नाउनी नुशी रवी नाओ
0: अदुगा इचे आईगी अपांबा मतगा हाईसेगे
1: कई नो हायो नंग नाई पकुदी मग आई ना थबक ओई ना लो ओई ना पांग थोक ना भोत ना दुईने
0: इचे आईगी अरोई बपुं फम दुदसु इचे ने इसे इसे सक पी रो को
1: सदाको
0: इचे मसी आईगी अपांबन
1: सदाको नंग नंग सिरान तुरा याम खला माले
0: इचे
1: थबक कुदिंग मगता अदुक थौना लेबि नाउना हकचांग कचेक तंग चोकथबदा पुकचिल अदुक पिथरि बकरि किनो
0: जे
1: नंगकै सुतौरोये नंगि दमकता फारा फारा बहिदाक मया मामा पिदना ई काप्तुना सुक्कन होनरि सिदि
0: जे
1: इंगो नंगना कोविचंपुटकी तोंगान ब महाव यावी ना हाइबदो यामचुमे
0: जे
1: होरेंदि कोविचंपुट पुरके इचि नाउ हाउना सामिनासे
0: जे वाना बने तौबिरुनुदा
1: ए वारो वारो इनाउना चानिंग बने अतै लेरसु हायुने इचे फंगना बहोनागे
0: इचे इसाकी ओसु लेरमी
2: आ
3: मा
0: नुगाय रे
2: ताई साले रमसिदिया
3: होय पाबा इनाउ ग वरी सारमनिबा
0: आइ खोय गिदिने मिरोन सुले जदबनिना इचा ओबसे ओथोकना नुगाय खरे
3: इमा
0: नसिन ना नाउ लेमि नरागा आइ खोय सु वखलसे सखलिबनिदो
2: आ आ आ से से से आ इचागी आ किमोनो एबदो ngasi di pore ache pambre yo pambre yo
0: baba sidi amna phaje aina pamba masu ne adu bu kimono sikai gi tururi bano chele am changlam la ni baba
4: kai su yam sang de
2: dai bino cheta yam changlam de
3: sada ko kimono machu sidi ya as inau de am paksara ni e
0: aseng we ro ja ija horel ji nagi pham nai ba ma hospital da la kani hai bada
3: la kani e nungthil pung hum da
0: अदुदी चे मखोय ओपदो इसयावगे
3: यांगदुइनि
0: किमोनो सि सेके को
3: सेटलो
0: अदुगै चे गै बानी फोटो सुना मिनासि को
3: सोइदना ना मिनासि
2: अदुदी त कियो
3: पाबा
2: अ इपा दुकान भाव मुचा दुक्तारिन हे दुकान जु थादो यादव तोरिसे
3: होय
2: अ होरे नुंगदा वाय लाके अ इचा सिंगी चाक्सु पोरके कोइन लाकपदा
3: अ पाबा चाक्ति पुबिर अनो अखोई दगी पुरो ओ ना हाय करे बाबा
2: ओ हे हे फरे फरे फरे फरे
3: होरेंदी सदा कोई बानी को बीचम फु चामि न दोइने
0: इसागि लमन से करम मतम द सिंग बंगम ग दोइनो खंद्रे दा
3: करी गि लमन नो इमा
0: इमा इमा सुहन बिरो

mamong thoi pi na amot patari nam thang chet tu na khwang chet ma si lang ching na ka tu na pamen sing den ma pat kum den long khon ba awa ba se thing kya phang li ba do na ha na polem pon thoni ma pham du uhan du na loi karak na da ba thaurang lu so asum na tak pi rak pa da ayang na ma pan thoi bi na bhagani lining tho na sanu khong doi jere ge hairam ma ga अहिंग तांगलो अथेंग मद लाग लगा काबो द थोइबिन वारिबो म तौदो वंगु निं थौ मदि पले म मा तरा म थोइगी खमलेन मंगलान द उहलरिन ममा तरा म थोये सि थोइबिगी म तौसि हे उव म तमदा खमलेन मि कप छै पोंग त थोइये म जाबि म थोइबि छै समु मा चाप ले पगुम खन लदना इमा इमोइबि म थोइबि हाइदन हेत कौदु मि कप नरिन အဆုံးကဝန်ကုန်နေထုံမင်္ဂလာန်တဆူမမုံမရှိဝရံဘဒူဥပဒမမတရာမထွေနာကမမုံကုန်ကပ်ဆက်လက်ပကအစီမထွားရှိနှွိုင်းတဲ့နဟောကလေရကဝါမစဲတမတငန်းတနမပန်တထိုးလကဝါနာအင်းငန်းမငိုင်းဖီအင်းုံတိုင်းငါလက်ပါအယုကန်တာအငန်ဘဒဝန်ကုန်နေထုံနာ मनाई था दा तंपागुम हंजबा अजीबू कौहलू रे दो तंपागुम हंजबा मपुई सना या थंग असी फंगबदा अंग मखोंग लई थोन लाक्तना वांगो निंग थोबो गुरुम लेगा मनाओ इबुंगो कर्म सना या थंग तापी गदबो तापीउ हाय हंगे चरे वांगो निंग थोंना नाइ जहनबा ngसिमो तरासंगन सारगा Sembi kabo mirai bak te kong sanduna imom lang len toibi loruso mapa i kom len manganda amat te popi imom do mirai pije chetuna taret silangduna wane leiba urum mirai gamba kom lei tuna kong salo asum na takpi rak labada nai jahan bana kong salage kanna hagul lak pasida wangu ning tauna ngai ko hanjaba ai sedam mama pu kho imom haluk na ba aduga imom na shet ka polo sampot phejet le teng sana lik kon ponam amat to watan pu khiga da ba ni aduga naha ki khongbu oina ba sam pangal ma tamnu pa tara ga mari ga pu kho asum na ta pe re ba tampa mayum hanja ba sina phagni mana oi bungo haidana khurung khari आछिदगी नाइजा हनबा मयुम द हलवाई रक्तना तारा चंगन चारगा आई सेदम अमदी थोइबिन सेन इनबा सरी भी अमदी सना लिकुन मया अमदो पुलम अदो सिथदना पुदना तमनुपा तारा मरीगा कबो सेंबी मिरे पक पांखरेदो असुन तमनुपा तारा मरीगा नाइजा हनबा ग मखोई तारा मंगा असिना ताव हुई सजत कुम नुम जन चंद लाक पसना पत्था ओम लगता कबूले पक तुम खरे दो अजुम ने लिए तन लाक पना तुम उराप की मसाई कोन जाऊँ रदना वांगो ने धोन पीरक पा सेदम बदो कोई थकता हाप तना नाइजा हन बना संचल लगतना तुम उराप तक कचल ली वांगले मत मशे मजाई भी में थोई भी सो मपाम मोरांग लमदम मधुगे अंग मथो सिंह ने लाख पदु उबदा संचल लगतना कौन अंगांग ना बा ताऊदना मोरांग सिंह की मना आतु दल लिए तुम रापो ना करी हरप पगे है बुत ताग दब गे तुम रापो निंग थों ने सेदम मधो लखतना पारगा मम्मूम थेवी थोईबी बुझें दना जावा सिंह कोई दे ये पाई मम्म थोईबी नहापु पोपो पंधाऊना लांगले नंगो नयुंग के गले पग थिन बिरलो हाइना इ पाद सेदम पिरकले इमोम ना हाइनिंग बर सिंग नब ले तना इ पाद सिंगोयु हाइना ता फिर को मतम सेदा थोइबिना पाइबुंगो पंथौ या थंग फंगलबदी हायं कोरो नमिता नमोंगी समा ले मानबी खोइनो विता मयांगा चकचा हाया नरगा सिंगु सवांग लाइबु खुरुमजगी हयेंगे मथंग हंगसित कालेंगे कुनगनी पानी पान में कोरो नमित असिदा नमोम ना सोयंगाम याउदना इपा मोरांगम दम योबंग

नब पन थौ की नया थ पी ने भी ओ असम हरक ताबर तुरा को नहीं थौ ना इपा इमो नुसीबी थोबी इपा या थी इमो ना निगो पुब थोंजेरो के न पाम लमदम नदू मोयरांग यौदि फाउ यांगदौलम खांग खोंलो पलोबो लेतबा सिंगो मान कुबी सनु कोइ मोम असम ता पीरै मजाय बे मे थ्विबी नसु पनथोइ पाइ बुङो नमोम न निंगबो थुंगजेगे को असि हायदना तुमुरा कु खुरुम जई तुमुरा पनिंग थौना थ्विबी यंगदना मु सिंगो इरै पागे मोम थ्विबी पन थौने यावा मु सिंगोइगे पन थौना सिंगोइ रे यावा से ना प सिलोइ नि फदे कोइ मो थ्विबी न पन थ्विबी पाइ बुङो सिंगोइ बिउ नमोम दो इमोइबे मा नहाक्ति नपन पनथौगी आथं तुंगिना कबो सिमी पुंग थादोक तुना कारग निदो केगे मोरांग लेबाक्ता इमोम नंग न खोंग सानद्रिङै कबो लेबा आसिद कुमै तोंनि मानो मान हाइजब उसनु इपासु येंगे लेबांग मियाम सु येंग सनु नंगि नंगि लेजब सेचादना कुमै एसे पांथोक कदबनि कोइ मोम हाइदना तापिरे वांगले मतम सिदा नाइज हनबना केगे मोरांग लेपा की पोलेम पंथौना ममोंगिदम सेनब पीरप चरी फी पोलोई सम्फो सना लिकोन खुदो पुनम फुथोकतना थ्विबीदा मजाय बिम थ्विबी से पोलेम पंथौना इमोम न लोई कारक पद सेनबने हाइदना पीरक पने हाइदना पीरे दो थ्विबीना हराव हराव लौरगा पीरक लिब पोलोई सम्फो चरी फी सना लिकोन पुनम अममम त येंगलगा नाइज हमद इपु पोलो सम्पोल सिदि पलेम इमागे ओइरम माले हाय दा मिरु नापुम इरा हौरे हंगजरकपद नाइज हमना इसुइबे म थ्विबी नहाकी पोलो सम्पोनि नै मो इसु हाय दा हेक तापिरक पिसिदा थ्विबी से माइथुम से मका लाम ने हराव जई आसोना पोगमेन पोगमेन रब तुंग सिदा कोरो निमिद दुगी अहिंग दुमा तरा सा पीबु पेन चिंदम लगा खोमलेन तुंगुन तान खरे मतम कबू लाइरें भी नदी अतल खम लेतना लेप्त न चत घेबन इनु तेन गा लगली कोरो नुमित नसी हाइबा असीदी सिमी कबो लाइपा की मियाम तिनफम संगले लसीदा निन खोमग लोइन ना मागे मागे ले जब से चादन मियाम से तिन भावन रगली असोन मजा आई में थोबी सो पोलेम पंथों ने पीरक पचरे फिजल ले तेंग दना सना लिक कौन पनम सिचिन सिजल ले दो कोरो ने मिले सिदा थोबी ने फिजल ले तेंग मुलोरे पुशिर भज बचेदी पद खरे दको नुंग दोन धक्के ले सिन मथक ते थोक पर थाज गुम निंग धीरे भी बे मगे माई थों थाजन गाल रे से भी पुंडा वांगलेन मतम सिदा कबू ने थो ममोम लोई संदिग चनिंग खोमी सो चरे फिज लेतेंग मुस लोयदना थोर इ काबो सेमि पुंगे कुमै तो फमदा पुंग छेन येदुना कुमै हवै मखोल से तारक पदा मोरांग मस चतराग मंगा नाइज हन ब याउना थ्विबीउ थगुन तोदुना लेंग थोरक लेदो सेमि पुंगे अचलो सिंग छिना थ्विबीउ उबदा इग नदा कैनो कैनो फजहे फजहे हाइदन हेत थ्विबी बुयंग नहीं है थ्विबी ने फजब से कयाम फजब के हाइब बु तला पमिन तो मु पुंबी सला फाउबा थे लग थंबा अथे तो उसे कुम लेंग ने थ्विबी की मसक दो येंग दो लिखे अजम ना लेप तो ना लाख पैसिना कुमही तो फुमजोरू पैसिद दी मियाम न थ्विबी बु फजई फजई फजई दा हाय न हेत नंग न सोन रुक पोछना कुमै तो फम जई पोम नन हेत निन खया पेना खोंबा पुंग छेन जई ब छिंग दु दिया थ्विबी के मछ छि उब म तम छिदा पुंग छेन यै ने हाय बसे काउ खिदना साप ले तुना यिन रु लेखे उन वाय मु सिख रे ने वांग ले म तम छिदा नाइज हन ब महा अछि छु ओ थो न सिंग ने फज खि तुमुरा कुनिंग थौ न नाइज हन बु येंग लेरेगा मोयरांग फमनाइबा लेमि दकु नंग लेमसे सही पामेल थकता लेरांग उरे कयाना लेसा तमदुना हौरीबा

0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯝꯃꯦꯂꯟ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯅꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 1994 ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ INA-ꯗ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯕꯨꯁꯨ INA-ꯗ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯝꯂꯒ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯇꯣꯃꯥꯜ ꯁꯤꯡꯍꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯪ 1994 ꯃꯥꯔꯁ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ INA ꯌꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯥꯔꯁ 17ꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ INA ꯀꯦꯝꯇ ꯌꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯃꯥꯂꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯦꯍꯃꯠ ꯎꯅꯗꯨꯅ INA-ꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗ INA-ꯅ ꯂꯥꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯃꯗꯦꯁꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯏꯪ 1996 ꯐꯥꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯗ ꯊꯥꯖꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯕꯤꯖꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯟꯗꯣꯂꯟꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯑꯟꯗꯣꯂꯟꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯁꯦꯜꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯨꯒꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯪꯅ ꯁꯥꯕ ꯐꯤ ꯁꯦꯠꯄ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯇꯨꯗꯨꯅ ꯂꯤꯠꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯂꯪꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯊꯣꯟꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯝꯂꯒ ꯏꯪ 1954 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯁꯤꯡ꯫
1: ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯆꯥꯒꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯟ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ꯫
2: ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯆꯪꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ, ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯂꯤ꯫
2: ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3ꯗꯒꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫
1: ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫
0: ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2:15 ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
3: ꯅꯃꯁ꯭ꯀꯥꯔ, ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯦ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯥꯊ ꯃꯦ ꯐꯔꯍꯠ ꯅꯥꯖ। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया, इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट, और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और

0: इनिंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ

0: समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
2: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवरस्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
3: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज

0: बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदिया का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
3: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

फौज भाइयों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत के आगमन पर प्रस्तुत है ये पहला नगमा फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म से ये गीत है लता मंगेशकर की गायन में, जिसे लिखा पंडित नरेंद्र शर्मा ने और संगीत प्रदान किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत है फिल्म सागर से। मजरू सुल्तानपुरी के लेखन पर ये गीत, जिस पर अपने संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इस फिल्म के निर्देशक समीर गांगुली और फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए जॉय मुखर्जी के साथ सायरा बानू।

नील कमल, निर्देशक राम महेश्वरी द्वारा निर्मित, निर्देशन दिया गया ये फिल्म है जिसमें वहीदा रहमान ने 16वें फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता था और इनके साथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे राजकुमार, मनोज कुमार, महमूद, बलराज शाहनी, ललिता पवार और शशिकला। ये फिल्म आई थी फेमस सिने स्टूडियो तारदेव मुंबई कल्पना लोक के बैनर थ्रू।

फौज भाइयों के लिए कार्यक्रम में ये अगला गीत है लता मंगेशकर की गायन में। इस गीत के लेखक हैं शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी। ये फिल्म है जागते रहो और इस फिल्म के निर्देशक अमित मैत्रा और शोम्भू मैत्रा। फिल्म के निर्माता और मुख्य कलाकार राज कपूर।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में फिल्म संगीत। कार्यक्रम में ये अगला गीत है आरती मुखर्जी के साथ जसपाल सिंह की आवाज़ों में। इस दो गीत के लेखक और संगीतकार रविंद्र जैन। ये फिल्म है गीत गाता चल, जिसके निर्देशक हिरेन नाग और निर्माता ताराचांद बजातिया। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए सचिन, सारिका मदनपुरी, पद्मा खन्ना और लीला मिश्रा। ये फिल्म आई थी राजश्री प्रोडक्शंस के वितरित के द्वारा और संपादित किया मुख्तार अहमद।

आकाशवाणी फाल ज्योति ने चुमंग टाटुदे बुमाई सोज सरा हना खासले ट्रेबुई वन ट्रल सुदे दोसो हाय तले हिनो वई दाउ पिकाले मशाला वई बियो

उपाय गति लेरक त्रवदा मुरानी धावना अपांबन थमला दुना अमुक सुहन्ना हरे तयुम चांबा कई दो बगे पिशक पीलिंगे देगी

0: 这种的弄新打这个的会更疲劳嘞。那么 water harvesting technique 是我们等 practice 到后年年都个来的，每年 tanning 在 gladiolus 么 tanning 个，那个啊，都把 lilium 就是 market price 旺么呢都个，market price 旺伊啊，都个马就塔不的嘛，那么等 urum 公么的塔不的啊，都每年那块 tanning 是 poly house 公么 tanning 嘞，大部分都不会很多是 open field 么等 try 到边看哩个，亚地亚人他是伊呢。जरबेरा ले रही जरबेरा जम कि तंग कोई ना वा बाहित आ रहे ना तिना की माँ की तंग अमा पामर ना प्रॉब्लम कर फेस तो भी आए को दोनों तब ओर्किड तो भी आए ओर्किड तो बसी लाइलू नहीं आता रे को था भी मोंग ना तरगा थम भी मोंग कमाए ना मेंटेन तो नहीं मक तंग चंगी को अदु बु हाई करगा दी तो माँ दी तो वंस लाई करगा तो मसा पोगला आगा कोई ना मसा तो दे मु संदो पक्की किस हाई तारे को संदो तो मुको इन मेंटेन तो वो या बगी पोले ओर्किड उन्हें सी योन बेयर है को तांगे उसी कांजे ओर्किड से फिलानोसिस का जो कोई दम 600 700 800 स्वाली योल है को अब मैं तो नहीं जैसी नहीं मापां देगी चेला नहीं मसाओ है ना योकल नहीं तो कोम पति यो तोकी बा अब जो बिजनेस मकान में नहीं था
1: ले शु था वो पाम जब ले था रे पर मिसिंग है था रे कोई कमर्शियल हो बोला मोंग द कोई शंदा लंबी हो ना चंचल बता रहा कि था रे पर ले तो ये इनकम वो फंगना ना बुकी दे मुक्त था रे कदई नहीं बा अब ना ममांग द की हो ना सुम चनर रख पता कोई ले मखल लाई द कन ना बा कई दो बा सुम बा ले मखल खरा मा कोई की हो बे इंडिजिनस हो बे खरा दी ले करे सिन तब हो जी कि अनो बोले मखल सिंह से याम चाउन था रखूं मतम द मसी की सेल से लाग ना बगी है तारे सेल से लाग ना बगी मरम सिंह से करी करी मरम द की लाग पे या दो कमाई ना कोई ना सीजे कमर्शलाइज तो होगा नहीं है बगी मतांग द चुकी दं थम बिरो
0: मेन वो ना जी मणिपुर था ना जी दी कनी सनारी वो है देखो ऐने समझ बोला मापम मापम कोल गुम सनारी पाम जी खाले दुगु रानी लो ना आ देखी सनारी जी था बगी टाइमिंग आ रहा असे मुझे हुजिक से ट्रांसप्लांटिंग तो रखो दिवाली नंगनो बा क्योंकि सनारी की मार्केट वैल्यू ऐता रखो योनो मत तम द कोई दिन पैसा यम फंगे जी दिवाली मत तम जिने बा ममांगी दिवाली दे न समता द किलो द अदु सनीपान योग रहे समापन योग रहे को अधिक माय लिक वो ना सार का यो लगा दी अदु नी गान तो रोग यम तोगी अदु ना थाव मत तम द कोई ना माय टाइमिंग जे यम फसन होट पी हो बा है दिवाली नंगनो बा को अदु का सनारी सी होय मैं ना थाना रे अदु सनारी न तब लय आई एम तंग पंजनिंग है तारे कोई ना दी कॉलेज से दी सी की मतांग द कोई रिसर्च तो उतना लोई जरा बनी तो कोई की कंडीशन दे यार अब पोनी को चाइना इस तरह है ना मैं आम जो तुम चाइना इस तरह जो तुम गूगल तो ये इंग्लिश निको याम पसंद पड़े नहीं मैं मसूस जो मकन मकन याम ले रहा कोई मणिपुर की ओएनडी तो कितना प्रॉब्लम सी कोई ना मसूस याम का सु लास्ट लाई दी ताप लाई की कटप की हाई बनी ने को हंगो बुसु फंगे बो अंगो बुंगन तो बट डेकोरेशन पर्पस की जो कोई वायलेट ले रे पिंक ले रे मखन मखन हम लाई माई मचू दिखो अदुंबा सी मतंग ट्राई तो होनी मयाम द दो कोई कॉलेज त लाख फॉर्मर है तारे कोसम लाई की मतंग द खंग फोनिंग मदे दुम सी की आइडियाज पी बनी आई मरु चेन ब खोट पगी जो दुम कोई मतिंग पंग जगे है तारे कोन इंस्टीट्यूट अमे दिगी इंडिया गी वेन मोई की लेडी आईएचआर गन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च लेडी आदिगी महाराष्ट्र को मोई की एमपीकेबी राहुरी गन मोन पुथोपा बेराई ती खरा कोन दुमसियन मंगमी है तारे दुगा माई की खै पम नमाज ओपन पोलिनेटेड ओइबा है तारे मरु जुदुम लो कोन मथंग जुदुम सिना बयाबा मसीम ट्राई तो होनिगी अदु सनारे जुदुम कंटिन्यू तो बयाय सनारे दुम फजन थानारी को चाना बनि नो अदु सनारे की महत्व कतन रिप्लेस अमा तो होनिंग बा मियम न सनारे थाग रे सनारे प्लप थाव न तब अनु बम जु थाव
1: चोइस तो अपाम बदो खन बे याना न बके
0: माने दुगा सिगि लई सनारे सर की फबसिना माजे यामना मसक सु दुमिंग बियो याम फजबनि कोगी धालिया की टाइप तो रोगो मना कुकु तो रोगो दुम सरगों वेन फजन होवनि गो दुगो प्लस मागी वेस्ट लाइफ हाइतार गो मन तंग सांग बने अदो सिम तंग ट्राई तो बियन सी मतांग द खंगिंग गदी अत्र मरु चेन मको पे मतिंग पांग दुम कोई कॉलेज त लाग दुम उनर ग कोइन मतिंग पांग जगे
1: हा चा दुगा जके कोइना कट फ्लावर गुम बा ड्राई फ्लावर गुम तो बुजे सिजिना करम करम बा कोगी रमदम सि द चाना बा मखल सिंग अदो सुकितंग थंबि
0: कट फ्लावर द ना साइन इन भाइजा करे कोई द सनारी बसे हुजे ओर्किड अमा दुम यारे को आदिगे मेन वे नाय साइज पंजगी बदो माउ सेनापति गुम दि दु मोय की वेदर से हम कूल ओन लाइव ने मोय दि ओपन जु दुम सनारम निन खले दुम थाव दु मोय दि इलाइला नि हिंगे तब दु कोई इंफाल एरिया जु दुम लाइव पोली हाउस सिना दन लाइव मे आम पोली हाउस मनुंग द आइन सुम उजम ने को इनकम जनरेट तव दु ब लाइन नुम पंगता था दु सरपति शेड हाउस तो लेर गदि खोन कट फ्लावर दोन सिना फिबा कट फ्लावर रंग साइन हाइज कि पाबी सिंग दो लिलियम गुम्बा जरबेरा गुम्बा मोय मार्केट त दम वैल्यू जो वांग बने वो उसे को दम चलो दम हम भी ओ कोई नाचो गुम्बा ना तो फंक्शन पेट को गुम्बा मोय रेट दम वांग बने तब वो तो वो सी था दरी मांग दा हाँ ना एक्सपर्ट सिंग दा अकंग ही लेदन को था मिसिंग तंग तान भी रगा माई मोंग दो तोरगा दम फजना दो फॉलो तो

0: आकाशवाणी इम्फाल गांगोम किरण पाव पाजरी अहन मदमर वैव पाव मुख्यमंत्री युमनाम क्याम चान हायरी शांति पुरक नबगिदम कांगलुप पुरुप सिंगलु सिंब सिंग वारी शानबदगी इम्फाल दिमापुर लंबीदा पैसेंजर बस सिंग चटपा हौरे समग्र शिक्षा मणिपुर की मखाद नौन सेमजिब वबगाई हायर सेकेंडरी स्कूल मुख्यमंत्री युमनाम क्याम चान संगाक्रे ग्लास्को कमनवेल्थ गेम्स लिसिंगनि कुंतरुक्ता तकमान फंगलक्रब सिंग अमशुं सरुक यारुब सानरोय सिंगबु मुख्यमंत्री युमनाम क्याम चान तारामन ओक्रे फुरुप कयागि लुसिंब सिंग सरुक यादुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम दा मियांगि मिफम पांगथोक्रे अमशुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मपोक निमित कमरी लेनेना बीजेपी ना थाम चुम नलेबाक सिंब थुंबदा सेवा संकल्प अभियान पांगथोक कदोरी मुख्यमंत्री युमनाम क्याम चाना इम्फाल की नगमापाल दा मेकानाइज्ड रोटरी पार्किंग फैसिलिटी संगाक्रे पार्किंग फैसिलिटी असे इम्फाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मखाद संगठपनी पार्किंग असे सकामरी पानब गारी निफुनिथोय सकानी पानब गारी मसा हमपुतरा थम्ब की खुदों चाब लैगनी थौरमद वांगांग मुख्यमंत्री नहाय शांति लैतब लैबाक अमत सौखत्प की माइकेद मांगजिल थान चंगशिनब गमलोय मरमदुना शांति हैबसे पुरुक्तब सुयामक याद्रब पोषक मनी शांति पुरुक्नबगिदमक तोंगान तोंगानब मफम कयाद चत्तुना कांगलुप फुरुप सिंगि लुसिंब सिंगवारी शानदुना माउसागि फियोमद हंजिलकनब लेप लैतन होनरी पाउ फौदुकन दना लान लौनदुना अदुमक लैरबदि अखोय पुनमक चाखुत मिनब यारोय हाइबो असेंग वाखलोलसि मखोयद निंथिना खंगलब मतुंग ngasidi हान चतप यारमदब लंबि सिंगद सथोक चसिन तव यारकले महाकन हाय
1: स्मार्ट सिटी ना दरगाह ले ना खल लगा रोटी पार्किंग में लंबा मिस दे लगी सी कोई मैं अपुन ना सीजन में तो मचें पागल का दी लंबी द कंजेस्टेड हुई बात हुई लंबी चीन में कोटो मैं थोड़ी हूँ खा हंडे बनी है कोई कॉटो में सी खाना लगा ले रोटी में सुसाको लो एक सुसाको लो हाय ना वही से तम ना तम ना तम ना सारा लगा अंदर लंबी सी पाव में सी यार इन्हें वो ऐड अब अब तो लगा दी पाई हाई में नंबर असो भी दिनों सोया हाई में नंबर अनिम जजमेंट तोड़ के से तरगा दी कोई से नेगेटिव थिंकिंग में खेल लगा दी समाज से पैसा को प्रॉपर थिंग लगा ही नहीं खाली शांति इसी पोरक्त और सुया या तो पोटे मनी ना शांति ले रही ले रही ना हाई बजे सुन मैं जाऊँ सुन शांति या फिर मैं बंद शांति लंबी संगीत
0: इम्फाल दिमापुर गौहाटी सेनबा बस मरियम सुंग विंगर तरुक कुमलंपा की आईएसबीटी देगी ngasi ayuk pung tarada lam thakre मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट के चेयरोल मनहाय पुन्न पैसेंजर चानीरोम ngasi लंबी परिंग ngasi सटकी ngarang इम्फाल लगे सखीबा पैसेंजर साम कुन मंगा अदु ngasi ayuk गौहाटी दा स्वयंगाम याउदन थुंखरे चेयरोल सिनेमाखा तनहाय नेशनल हाईवे 2 द पैसेंजर सिंग चथोका सिन तहल लगनी हायना मुख्यमंत्री युमनाम क्यामसान उप मुख्यमंत्री नमसक किबकेन मदि एमएलए हाखोलेट किबकेन न लाउथो किबादु थबक ओइना पाइखलकपनी काक्सिंग जिला की मनुंग चन्नलाईबा वबगाई हायर सेकेंडरी स्कूल समग्र शिक्षा मणिपुर की मखाद नौन सेमजिंदुनंगसी मुख्यमंत्री युमनाम क्याम चान संगाक्रे थौरमद वांगांगब मुख्यमंत्री नहाय कुमजा लिसिंग कुलमदोयद सुगनु सत्प की लंबी उरक्प स्कूल असि की फिवमदगी सिंथानिंगाई ओइना फिवम फन उरे मुख्यमंत्री नहाय तेनख्रब था तरुक की मनुंग वबगाई केंद्र की मनुंग लुपा कोटि मंगा कायथोक्तुना लंबी सेम की थबक मपुंग फान लोयशिलकले मखा ताना केंद्र से की लंबी थोंग फ्यूम हेना फगत अनब अहेनब सेंथंग पिनेनब सुखन रगनी हायना मुख्यमंत्री ने फोंगदोकी महा नहाय इम्फाल गौहाटी की भरा वांग की अवाब कया मायुक नरिंग चेयर कसीदा इम्फाल गौहाटी की बस सर्विस अमुक हन सत्प हरुक पसीना राज्य से की मियाम अखन न महिरोय सिंग मदि लायंग सत्प मियोय सिंग द हेन कुदोंग चाह लगनी थौरमद वबगाई केंद्र की एमएलए डॉक्टर उसम देवेन मसुंग मकुक थोंग ऑफिसल कया सरुक याकी अहम सुबह नेशनल स्पेस डे ngasi थौबाल जिला की वाइखोम मणि गर्ल्स कॉलेज पांथोक्रे महिरोय सिंग अमसुंग मिसम मियाम दा स्पेस साइंस की मतांग दा लैबाक असी कया याम खुमांग साउक्सिले मदि स्पेस की लम दा अकुप वारोल सिंग खंगनब पांदम दा पांथोकप थौरमद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बाजपाई सरुक याकी थरुद्र श्री बाजपाई नहाय भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी न तोान तोान बल्लम सिंह कम्युनिकेशन वेदर फोरकास्ट डिजास्टर मैनेजमेंट लव सिंगू शिक्षा न सिंह बल्लम सिंह अचौब थौदांग लौदना अहोम क्या पुरप गमले पाव की मरक थना अतेनु ब्रेक अमा
2: मियाम द खंगनजबा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स इम्फाल दा निंगथौ काबा खुदिंगी नुंगथिलपुंग अनिदगी

0: कुरा
1: कुरा थन्ज छै त बिरमली ब्रो
0: है लै सेम्बा
1: कुरा
0: कुरा गिदि रेडी ओ मसा सिना पोथा फम हाइबदु ओइरि बनि ने हेबुङ
1: कुरा नसि एक्सि दगिदि अखै होमसि द नियमक सुला नि
0: हा है खोइ गि होमसि द पियम सु हेंकल लगदबा कना नोन हे
1: ए हाय रे कांद लाकुला इतु इने इने सोमदा सोमद संगबिरो
0: हैबु हाना उखी बगुम सुतौरे ए भेमल नत्रने ए भेमल तात थवान छ हे ए भेमल आइने आइ नंगी ताद थवान जाउने हे अवां खुल की थवान जाउनी ने
2: दादा दादा दी अना आइ याव दे को
0: ई भेमल इबुंग अना एक यौथे मतम दो नुंगसी बनिदा
1: खुरा इने सिगदी क्रम न खंगना बिरमिनो ऐ भाव में ता तादरे
0: है लै सेम्बा
1: खुरा
0: इसेल से आई गे खुल रुगी इसेलिन हे महा किना मखा लै काय अदुगा नंगी खुरा गिना अवांग लै काय नि हे लै सेम्बा
2: दादा दादा सुमन थेनर कनी हसे न संदी मंग फाव खलुदे
1: इने खुरा कुने उनद्रबनी उनबसीद खुरा वही सन भीरमो इने लगेदब काम लोसलुखीगे
0: भेमल
2: दादा
0: मफम लागू
2: अत लाइ दादा दादा अवां खुन की लंपा मचिन की जाम पादो हौरीब्रो
0: नंसीदी ओंथोपनी भेमल ओनबसीद जाम पादी चन फमु कदाईदी हे
2: दादा दादा खुद की पुखी मपान हूब कबोक लेदो हौजिक सात्ब्रो
0: सात्द्रे
2: सात्द्रे
0: पुख्रीद फुनख्रे
2: कई
0: युबूरब थवान जाओ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯩꯗꯥꯡꯂꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯕꯦꯃꯜ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯗꯣꯡ ꯐꯥꯔꯛꯐꯝ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯗ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯄꯨꯡꯀꯛ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯍꯧꯃꯤꯟ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯨꯡ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯆꯧꯕꯗ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯣꯏꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯀꯥꯡ ꯖꯨꯂꯣꯟ ꯍꯔꯤ ꯎꯊꯥꯟ ꯂꯤꯀꯣꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯦꯛ ꯆꯤꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯗꯕꯅꯤꯗ
0: ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯏꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯈꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯣꯏ ꯕꯦꯃ
2: ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯗ ꯇꯥꯗꯗꯤ ꯂꯤꯀꯣꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ
0: ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤ ꯏꯕꯦꯃꯔ
2: ꯇꯥꯗ
0: ꯅꯪꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕꯤ
2: ꯇꯥꯗ
0: ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯕꯨꯡꯅ ꯇꯥꯈꯤꯅꯤ ꯏꯕꯦꯃꯔ
2: ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯨꯏꯈꯤꯗꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯃꯥꯒ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒ
0: ꯏꯕꯦꯃꯔ
2: ꯇꯝꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕꯩꯁꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯂꯒ ꯃꯥ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯗ
0: ꯕꯦꯃꯔ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯣ

0: खो गंगा दूध से ताक नहा की ननाक ते लाग लगा नंगिया वहा बदरे सरु जानी अदु आई आई गम की दिए इबे मन
1: इपुरो इबन थंबीर अंबा खरा अदुना आई गी इशानुपा अनियत ओ मही मसिंग तमहल लखी बने मखोई तबु मी ओइर बदी हाय दुना आई न सोख तबले तना ओ नरकी
0: मदो मामा ओइ बिए मगी अशेंग ब मचत नि हि बिए
1: मा अदु बुतादा नसी दी आई
0: मखोई मखोई दि मखुत मचा दो पाइ दुना हाइना थांग ब तंबी ब दन त मखोई मखोई तबु मी मा मम ओहेन बहाई बसे मामा मपा ओइ बाई खोई गि मथौ नि हि बिए मा
1: दादा
0: अदु इथो पांग थो लो बाई खोई से हौजिक दि मखोई ये नब हाई बदो ओए रे रे रे
1: नसी दे मखोई मखोई की संसार दुदा मामा ओए भी आई की चना पम लेत्र माले आई बुई तो पिलक ले था दा आई बुई तो पिलक ले नसी दे नसी दे यह इशा अनी की मामा ने हाई बदो मधु पावा हायन की देने दादा
2: ने ने
1: लेशेमा
2: इने असुंद लेंखिलेसे इनी ने लेगे दब कादो लुशिन मले होरे बने
1: फरे फरे दादा नसल अमु चंग जयु खिगे
0: ये मा
2: खुरा चंग न बतौसे मयाम गी एउकी सासु थांग तो बले होरे बने
0: संगसि संगसि लेशेमा

कांटों से दिल लगाओ जो ताउम्र साथ दें, कांटों से दिल लगाओ जो ताउम्र साथ दें, फूलों का क्या जो सांस की गर्मी न सह सके। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 50 सेकेंड। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदा

बार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। हर सिंगार एक ऐसा फूल जो रात के खामोशी में महकता है और सुबह की पहली किरण के साथ अपनी खुशबू बिखेर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ये पुराने सदाबहार फिल्मी गीत। वक्त गुजर जाता है लेकिन उनकी महक, उनकी कशिश और उनका एहसास दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। कभी कभी मौसम सिर्फ मौसम नहीं होता, वो किसी की याद बन जाता है। हवा में घुली खुशबू, फूलों की नरमी और बहारों की रंगीनियत सब मिलकर दिल से बस एक ही बात कहते हैं, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। तो आइए यादों की इस खुशनुमा महफिल का आगाज करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जिसमें मोहब्बत की रोशनी, मुलाकात की तासीर, दिल की धड़कनों की नरमी और फूलों की खुशबू है। साल था 1965 का जब फिल्म आरजू ने संगीत प्रेमियों को एक बेहद खूबसूरत गीत दिया जो रुमानियत की एक बेहतरीन मिसाल है। इस दिलनशीन नगमे को अपनी मखमली आवाज से सजाया मोहम्मद रफी साहब ने। गीत के अल्फाज लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने, जो साधारण शब्दों में भी दिल की सबसे खूबसूरत कैफियत बयान करने का हुनर रखते हैं। वही इसे अपनी मधुर धुनों से अमर बनाया हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। यही वजह है कि 6 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और कशिश बरकरार रखे हुए हैं। जब भी ये नगमा सुनाई देता है यादों की एक नर्म सी दस्तक सीधे दिल पर दस्तक देती है। तो आइए फिल्म आरजू का वही सदाबहार नगमा रफी साहब की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, यानी वो महफिल जहां सदाबहार नगमे सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। मैं हूं आपके साथ फेरोज, और अगले कुछ लम्हों तक हम साथ मिलकर सिनेमा के उस सदाबहार गीतों की खुशबू, उसके अल्फाज और उसकी धुनों का सफर तय करेंगे। सिनेमा और संगीत की उस खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है, जहां कुछ फिल्में सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं सुनाती बल्कि हमारी जिंदगी के एहसासात को आवाज देती हैं। अब हम बात कर रहे हैं साल 1976 की एक बेहद यादगार और रोमांटिक फिल्म कभी कभी की। फिल्म की कहानी और पटकथा पामेला चोपड़ा ने लिखी थी, जबकि इसका निर्देशन और निर्माण किया था मशहूर और मारूफ फिल्मकार यश चोपड़ा साहब ने। इस फिल्म में उस दौर के शानदार कलाकारों की एक नायाब महफिल सजी थी। वहीदा रहमान, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। कभी कभी की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी के साथ साथ इसका संगीत भी था। संगीतकार खयाम ने गीतों को ऐसी नजाकत और ऐसी रूहानी मिठास दी कि फिल्म का संगीत आज भी सुनने वालों के दिलों में उतर जाता है। और जब बात गीतों की हो तो साहिर लुधियानवी का नाम अपने आप ही जहन में आता है। उनके अल्फाज में मोहब्बत भी थी, जज्बात भी थे और जिंदगी की गहरी सच्चाई भी। और फिल्म का सबसे यादगार गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आज भी हिंदी फिल्म संगीत के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में शुमार किया जाता है। इसी गीत के लिए साहिर लुधियानवी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और मुकेश साहब को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वहीं खयाम साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का सम्मान भी मिला। दिलचस्प बात यह भी है कि कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी को दीवार के बाद फिर से यश चोपड़ा ने पेश किया था, और आगे चलकर वहीदा रहमान, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन और राखी, ये चारों कलाकार यश चोपड़ा की

फिल्म त्रिशूल में भी एक साथ नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर भी कभी कभी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था। और पुरस्कारों की बात करें तो 24वें फिल्म फेयर अवार्ड में कभी कभी को कुल 13 नामांकन मिले और इसने 4 पुरस्कार अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का खिताब भी जीता। तो आइए इसी फिल्म का एक दूसरा नगमा हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, और यादों की इस हसीन शाम को सुरों की रोशनी से हम सराबोर करते हैं उसी नगमे के साथ। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल सदाबहार गीतों की हर सिंगार में। हर सिंगार जहां हर शाम महकती हैं उन सदाबहार नगमों से जो वक्त की गर्द से बेअसर होकर आज भी दिलों में उसी शिद्दत से बसते हैं, वो नगमे जो अपने दौर में बेहद मशहूर रहे। दोस्तों, मोहब्बत का भी अपना एक मौसम होता है। जब फिजाओं में बहार हो, हवाओं में गर्मी हो और किसी की एक मुस्कान पूरी दुनिया को हसीन बना दे, तब दिल अपने आप गुनगुनाने पर मजबूर हो जाता है। हिंदी सिनेमा ने ऐसे ही अनगिनत जज्बात को सुरों में डाला है और कुछ गीत ऐसे बने जो हर दौर में इश्क की जबान बन गए। आज की इस महफिल का अगला ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा गीत जिसमें पहली मोहब्बत की हल्की सी खुमारी है, मिलने की बेताबी है और दिल की धड़कनों की मीठी सी सरगम भी। और ये गीत है 1971 में प्रदर्शित फिल्म शर्मिली का। शर्मिली एक ऐसी फिल्म जिसने अपने संगीत, कहानी और कलाकारों के शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। और जब संगीत की कमान सचिन देव बर्मन साहब जैसे महान संगीतकारों के हाथों में हो तो फिर क्या कहने, वो संगीत अमर हो ही गया। गीत के खूबसूरत बोल लिखे बेहद जज्बाती शायर नीरज ने, उनके अल्फाजों में शायरी की नजाकत भी है और प्रेम की मासूमियत भी। और फिर जब इन अल्फाजों को सुरों की रूह बख्शी हो लता जी ने, तो यकीनन एक ऐसा नगमा जन्म लेता है जो पीढ़ियां बदलने के बाद भी दिलों पर राज करता है।

खिलते हैं गुल यहाँ। बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म शर्मिली से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार के इस दिलकश महफिल में, और हर श्रृंगार में अब वक्त है एक और बेहद खूबसूरत नगमे का, और यह नगमा है 1976 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म महबूबा से। इस फिल्म का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने और इसका निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा आरडी बर्मन साहब ने। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की।

महबूबा फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हर सिंगार से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे 11:10 पर मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और उसके पश्चात आप सुनेंगे गीत मेरे मन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं।

0: भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today in Siliguri, West Bengal. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said, "For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interest and reciprocity."
2: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be fair degree of my recognizing and respecting what is their interest, just as I expect them also to do so. It is when you get that landing point, that common ground, that relationships work smoothly.
1: The External Affairs Minister also described Pakistan as a

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you on market-related queries, but do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें। श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं बाजार विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
0: वार्म वेलकम सिद्धार्थ।
2: गुड इवनिंग। नमस्ते प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियां।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द सेकंड consecutive week, Sensex and Nifty slips around 0.5%. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग आधा प्रतिशत फिसले। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता के विफल होने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सप्ताह के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार दूसरे सप्ताह फिसले, बढ़ते वैश्विक तनाव, कच्चे तेल के बढ़ते दाम और वैश्विक बॉन्ड बाजारों में अनिश्चितता के कारण ये गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 468 अंक यानी 0.6% फिसलकर 77,541 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग आधा प्रतिशत लुढ़ककर 24,252 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों की अगर बात करें तो मिड कैप 100 में मामूली गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्रीय स्तर पर निफ्टी आईटी और एफएमसीजी में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.3% की गिरावट आई। इसके विपरीत निफ्टी मेटल और रेल्टी में लगभग 2% की वृद्धि हुई। निफ्टी मीडिया में 1.4% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 28 पैसे कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.71 पर स्थिर हुआ।
0: So Siddharth, the benchmark domestic equity indices for the second consecutive week declined due to the reasons mentioned by Prachi also, renewed global tensions, elevated crude oil prices and uncertainty in global bond markets. Now that we're getting into the third week, these will continue to persist. And we will continue to have the weighed down investor sentiment going forward.
2: See, Rajesh, it looks...
0: It seems so.
2: Yeah, so as you rightly said, it seems so. Yes, because we don't see any dilution as far as the global tension is concerned, whether basically the most important being the the war between Iran and US and Iran. So we haven't seen any letdown there, though the war is not there, but there is obviously, we're looking for a peace deal. So obviously, so that the Strait of Hormuz, which is almost the 30-40% of the oil supplies to the world, come through that Strait of Hormuz, so which is still almost closed. And obviously uncertainty is also, I would say, is now a certainty. In last 3-4 months we have seen so many attempts, and there were also attempts and peace deals actually signed also, but obviously nothing sustaining, I would say. And the same as you said about the global bond markets, yes, and the most important being the US, which obviously there were expectations of inflation, interest rate hike, and that led, there was also a bond, their 10-year long tenor bonds also, you know, the yields were very high. And obviously that is why the US, I would say the Treasury Secretary decided, the US government decided to buy back long tenor bonds of a large size, and that led to the cooling of the yields. But yes, still that also hasn't sustained, because there is huge debt obviously, which is now.
0: So in such a scenario, Siddharth, what should an investor be doing? What should one do?
2: See, we obviously, I would say,
0: let's look at the opportunities. There are opportunities.
2: Yeah. So, Rajesh, coming back, because your question is for the investors in the Indian market.
0: Right.
2: Obviously, the impact that the Indian market is also obviously is getting impacted is because of a lot of global reasons, not purely domestic. Nothing domestic, I would say, except the monsoons, which have been poor, or I would say they're not widely, properly distributed rainfalls, and that is why we are seeing some impact on sowing, and also that is why we are seeing elevated food prices, and especially we've been seeing in last few days there have been news about certain specific items of consumption which prices have gone up. But yes, government of the day, we have huge buffers, and we are also taking steps to ensure that those prices are contained. So coming back to your basic question, what should the investor do? I would say the investor should obviously, I think one should look for opportunities, because macroeconomic fundamentals of the Indian economy are completely intact. Inflation is still within the range of RBI's stated goals, just crossed that level, and it is within, for the entire year also, it is likely to remain in that range. And in fact, for the GDP for this year, RBI in the last monetary policy has raised the estimate to 6.7%. So, and if you look at the GST collections, the income tax, the direct tax collections, or the policy of the government to push manufacturing, and to also the policy measures in to take policy, you know, which is leading to investments, and especially foreign investment into India. So I don't see anything for the investor to worry. But yes, one has to look at opportunities. And also, if you're investing now, so you should keep in mind that yes, the returns, you may not get immediate returns, and we always say that you have to have a medium to long term
0: horizon. So what
2: horizon.
0: I hear you say, Siddharth, is that the market will remain vulnerable. And this is primarily because of the expensive crude, a weaker rupee and higher US yields, which you mentioned, can simultaneously affect inflation, corporate margins, interest rates, and also foreign portfolio flows.
2: See, but if you look at, obviously these are things which could pan out in coming days, but if we look at the estimates given by the central bank in its last monetary policy, they do not see inflation getting generalized still. They have still maintained their neutral stance as far as interest rate is concerned. So, and they expect that they will be able to contain inflation, and they do not see a reason to hike interest rates now, at least for the Indian economy, and they do not see that danger of inflation cutting across or impacting on the core inflation also. So I think it would be early to assume something like that, until unless if the crude, obviously the crude oil prices sustain at these levels. So that needs to be seen. And I would also say to counter that argument that India, when the war started, the US-Iran war, we also took a lot of steps as far as
0: to secure our
2: energy supplies. We have increased the number of sourcing from where the countries, about 19 now, we've almost doubled. We around 40. Plus, we are also spreading our energy in base to a lot of renewables. So I think all that, I do not see too much of... there will be some impact. Obviously, rains are also having an impact, and there will be sentiment also getting negative on certain. But we have good buffers, so I do not see immediately any concern.
1: श्रोताओं और भी खबरों की विवेचना करें कि हमारे समक्ष सिद्धार्थ सिंह मौजूद हैं और अगर आपके भी दिल में कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें कॉल करें कॉल मिलाएं और ये नंबर्स हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 आगे और बात करेंगे आपसे सिद्धार्थ मगर उससे पहले आइए जोड़ते हैं अपने पहले कॉलर को दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे थे कृपा शंकर जी मुझे उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे मगर उससे पहले हम एक सवाल मेरे मन में है सिद्धार्थ की आपने जैसा कि बताया कि रेजिलियंस की जो बात है मुझे लगता है कि एक मच्योर खिलाड़ी की जो पहचान है वो ये है कि वो पिच पर कैसे टिके रहते हैं ये नहीं कि वो कितने छक्के मार रहे हैं और एकदम जो है वो अलंकृत कर दिया है पूरे माहौल को बहरहाल हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का डेटा आया है इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा आया है अगर हम Q1 के रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो भी हमने अच्छा एक प्रदर्शन जो है हमारे इकोनॉमी का तो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो या यूं कहें कि हमारा जो बही खाता है उसमें अगर लाल लगे हैं तो हरे के भी निशान हैं
2: नहीं बिल्कुल ठीक कहा प्राची आपने जैसे जो आपने Q1 की जो हम अप्रैल से जून की अगर कॉरपोरेट जगत की हम अर्निंग्स या जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी मतलब बिल्कुल भी बुरे नहीं थे और अगर आप और ये ऐसे समय पे अप्रैल जून वो समय है जब हमने पूरा जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वो शुरू हो गई थी तकरीबन फरवरी के लास्ट में तो वो अप्रैल जून पहला क्वार्टर पूरा जो है वो उसी में निकला है जब दोनों देशों के बीच में और पूरी दुनिया में जो है
1: इतनी उथल पुथल
2: और अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी जो क्रूड ऑयल है वो एक बेस वो है रॉ मटेरियल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स मतलब चाहे वो केमिकल्स हो चाहे तो किसी भी तरह का तो वो अगर इफेक्ट होता और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम 90% उसे आयात करते हैं और उसमें से भी तकरीबन काफी बड़ा आयात हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से ही आता था तो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने उस स्थिति पे शायद हमने उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए और उसके साथ साथ हमको लगता है जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है जो इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं या जो महंगाई दर है वो अभी भी जब मैं कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा कोर इन्फ्लेशन जो ट्रैक करता है तो उसमें अभी कहीं ना कहीं उस तरह की चिंता या जो सेकेंड राउंड इफेक्ट हम कहें या कंपनीज पास ऑन कर रही हों प्राइसेस ऐसा अभी दिख नहीं रहा है
1: जी दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं कृपा शंकर जी महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
3: हेलो नमस्कार जी
1: नमस्कार
3: मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि जैसे सर तो विशेषज्ञ हैं तो ये लोग अपने ऑफिस इनके कहाँ हैं जहाँ से हम जाके सलाह ले सकें और सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मैं टोटल मेरा अमाउंट जो है FD में लगा हुआ है लगभग 40 लाख ये अक्टूबर में मैच्योर हो जाएगी सितंबर लास्ट में तो ये बताइए कुछ गोल्ड भी है तो ये अब मैं कैसे कहाँ मैं इसको इन्वेस्ट करूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में नयापन है तो
2: कृपा शंकर जी आपकी मैं एज जान सकता हूँ आपकी उम्र
3: मेरी एज तो लगभग सीनियर हो गई है बच्चों के लिए बच्चे जो मेरे 26-28 के हैं तो उनके लिए आगे क्या रहेगा
2: नहीं कृपा शंकर जी आपका सवाल बहुत अच्छा है देखिए मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ मेरा कोई इस तरह का ऑफिस तो नहीं है मेरा बेसिकली जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है और मैं जो अर्थव्यवस्था करीब 25-26 साल से ट्रैक करता हूँ इसलिए मेरी जो भी इस पे नॉलेज है वो मेरे काम कर के जो भी मैंने सीखा है तो पहला तो सवाल आपका उसका जवाब ये है
1: और मार्केट मंत्र में आप आते हैं हाँ, और सभी सवालों के जवाब
2: जी तो वो है दूसरा जहां तक आपने जो सवाल पूछा कि आपको आपके लिए तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपने खुद ही कह दिया कि आप सीनियर सिटीजन है लेकिन आप अपने बच्चों के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बिल्कुल उनको अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए बिल्कुल करना चाहिए और मुझे लगता है 25-26 के हो गए तो अब तक शुरू कर देना चाहिए था मतलब मुझे लगता है एक राइट एज है जैसे ही आप मेच्योर होते हैं 18-19 साल में ही म्यूचुअल फंड में आ जाएं अगर उन्होंने पीपीएफ अकाउंट आपने नहीं खोला है तो आप वो खोल सकते हैं, क्योंकि वो आज भी सबसे बढ़िया निवेश है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जब तक निवेशित है तब तक टैक्स फ्री है और आपको जब मिलता है तब भी टैक्स फ्री रहता है। तो पीपीएफ खोलें, म्यूचुअल फंड खोलें और मार्केट बेस्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा इक्विटीज मतलब जब स्टॉक मार्केट जो आधारित म्यूचुअल फंड हो उन पे ज्यादा लगाएं। आपने एफडी कर रखी है तो आप अपने जरूरतों के हिसाब से अपना पैसे को सुरक्षित एफडी में ही रखें। आपको इस उम्र के इस पड़ाव पे तो मार्केट्स में लगाने की सलाह नहीं,
0: बेटर इनको अर्न करना है।
2: नहीं, इन्फ्लेशन से भी राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको इस वक्त पे डेट मार्केट की भी सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि एफडी में एक सबसे बड़ा फायदा इस समय ये होता है कि आपको जब भी पैसा चाहिए तुरंत मिल जाता है, डेट में भी मिल जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि इस समय के जो डेट फ्लोज इनको उस तरह के डेट में भी उस इन्फ्लेशन को ये बीट कर पाएंगे। और इन्फ्लेशन अभी इंडिया में कोई बहुत ज्यादा इस समय नहीं है, थोड़ा सा इस समय बढ़ा है मीडियम टर्म में, बट मुझे लगता है इनको चूंकि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन होने का भी कुछ फायदा मिल रहा होगा।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से हमारे साथ अरिजीत चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम एंड स्पेशलिस्ट सर। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वन थिंग, दैट इज मेरे दादाजी ने कुछ शेयर्स छोड़े थे मेरे नाम पे, तो अभी उस शेयर्स को क्लेम करने के लिए पहले तक के सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लगता था, तो मैंने बीच में सुना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको हटा दिया क्योंकि काफी लोग वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, तो आज भी क्या वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लागू है?
2: नहीं अरिजीत जी, देखिए सवाल आपने जो पूछा है ये कई बार बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जो आपने बात बोली कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि आप अपने फादर के या मदर के जो भी आप जिनके बिहाफ पे जो आपने बोला आपके फादर ने जो कुछ शेयर्स खरीदे थे आप उनको क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर आप वो तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा उन्होंने कोई, हाँ ये जरूर किया होगा कि उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया होगा कि किस तरह से आप इस्टेब्लिश करें कि आप सक्सेसर हैं अपने पिताजी के। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट तो केवल ये इस्टेब्लिश करता है कि उनके कितने जो है सक्सेसर्स हैं, वो शायद उनकी आपकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके कोई और भाई बहन है फैमिली में, लेकिन हो सकता है आपके फादर ने अगर कोई कोई विल छोड़ी हो या कोई अपनी उन्होंने इच्छा कहीं रिटर्न में व्यक्त की हो कि कैसे किसको ये शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ये तो जरूर तय है कि आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप ही उनके राइटफुल सक्सेसर हैं और आप ही को

0: क्यों आप ही को दिया जाए?
1: सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद जॉइन्स अस नाउ. सुभाष, अ वार्म वेलकम.
2: गुड इवनिंग सर.
1: गुड इवनिंग
2: सर. अब एक डेढ़ साल से नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो अभी फिर 2026 में भी हमें कंटिन्यू कर रहा हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ऐसा ही चल रहा है, तो क्या मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए सर या कुछ डिसकंटिन्यू कर दें? दो तीन म्यूचुअल फंड है सही से चल रहा है.
0: नहीं सुभाष जी, एक तो ये है कि कल का जो मार्केट मंत्र प्रोग्राम होगा उसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेशली डिस्कशन केवल म्यूचुअल फंड पे होता है, आधारित होता है. लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सवाल का फिर भी इतना जवाब जरूर दूंगा कि अगर नेगेटिव रिटर्न आ रहा है तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का यही एक फंडामेंटल ये है कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP के थ्रू कर रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूं, तो बिल्कुल उसको करते रहें. और आपको जरूर जब आप एक थोड़ी अवधि के बाद आप देखेंगे 2-3 साल बाद कि आपको जो ये रिटर्न्स हैं, क्योंकि इस समय जब आप रिटर्न जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट्स अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं उसी पैसे में, और वो जब मार्केट चढ़ेगी तो वो यूनिट्स की का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, तो आपको फायदा जरूर होगा. तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्ट करते रहें.
1: Moving on, the United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. The products include hockey sticks and tongue depressors. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. Mr. Carney blamed Washington for the failure of the talks and said the last-minute changes in the U.S. proposal were unfair and uneconomic. The last line is extremely important, that last-minute changes were very unfair and uneconomic. How safe would our deal be with the United States? Last minute changes?
0: Rajesh, I think we've had a fairly very detailed discussions, and I think now behind the curtains, the last minute threadbare details are being details are being worked out.
1: I'm sure Canada also had the last.
0: But with Canada, if you go back, Rajesh, I think there has been some problem with Canada. And last time also, when US imposed tariffs on them, Canada retaliated with the.
1: So we are quite hopeful in our case.
0: Yeah, in our case, obviously we have come down to 10% now. So, and I don't see, and we are very large partners. Still, we continue to be one of the biggest trading partners. US continues to be our biggest trading partner, and biggest our exports to US haven't come down. So we continue to export to US. We are the largest exporters to US. So I don't see that risk with Mr. Trump. But though, yes, he is unpredictable. Notwithstanding, having said all that, yes, still the unpredictability factor with Mr. Trump always exists, and the example is before us.
3: सिद्धार्थ, और भी खबरें हैं हमारे पास जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आइए भोपाल से जुड़े शंकर को. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट मंत्री सिद्धार्थ जी को. नमस्ते. ये GDP रेशो US का डेट टू GDP करीब 123% 126% के आसपास है. अमेरिका जापान का वो ऑलमोस्ट डबल है, जिसकी वजह से वो काफी जबरदस्त रिसेशन में या स्टेग्नेशन में गए थे. क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी स्टेग्नेशन में जाने की संभावना है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक और इसी से संबंधित सवाल है. US में इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ेंगे नहीं, घटने की उम्मीद है. ऐसा है तो हमारे यहाँ उनकी अगर यील्ड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो पैसा फ्लो इंडिया बढ़ेगा क्या? सो दैट वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैन रिमेन इन्वेस्टेड, एंड बिकॉज अवर सेविंग्स इज ऑल इन दैट, अवर पेंशन, अवर फ्यूचर इज लिंक्ड विद अवर म्यूचुअल फंड. सो हाउ इज अवर फ्यूचर इन म्यूचुअल फंड फॉर इन इंडियन इक्विटी मार्केट? थैंक यू.
0: नहीं शंकर जी, आपने काफी अहम चीजें और बहुत जरूरी चीजें उठाई. एक तो मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करनी चाहिए US के डेट को लेके, क्योंकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका. हाँ, एक बात जरूर है कि अगर वहां महंगाई बढ़ती है तो वहां अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए खराब है, और अगर वहां इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, जैसा आपने बोला जो उन्होंने अभी बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया, तो उसके बाद जो है कुछ यील्ड्स वहां घटी भी थी, लेकिन अभी वो कितना सस्टेन करती है वो देखने वाली बात है. हाँ, अगर अमेरिकन इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आता है तो बिल्कुल हमारे ऊपर

0: असर होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है मार्केट है अमेरिका, साथ साथ हमारी आईटी कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में जो है काम करती हैं, तो उन पे ज़रूर उसका इफेक्ट होगा। तो और जहां तक आपका सवाल कि अगर वहां यील्ड कम होती है, तो बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि हो सकता है वहां से इन्वेस्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं डेट मार्केट में तो बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। और देखिए शंकर जी, एक बात और आपको मैं बोलूंगा, अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये आप हमेशा एक भरोसा मान के चलिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की आज भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तकरीबन 7% इस साल भी हमारा एस्टिमेट है, 6.7 आरबीआई ने बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी अपने निवेश को लेके कोई चिंता करनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल्स हों चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब सॉलिड हैं और कोई भी चिंता की बात नहीं। एक्सपोर्ट्स हों, आप देखिए इस चुनौतीपूर्ण टाइम में भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो है, जब ये जो अनसर्टिनिटी दुनिया में आई है, और ये अनसर्टिनिटी तकरीबन 2 साल से, टैरिफ हो चाहे चीन को लेके हो, तो हमने एफटीएस वगैरह भी किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हम कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारे एक्सपोर्टर्स इन सब चीजों से बचे रहें।
1: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। अभिनंदन करते हम जरूर अगर योगेश जी के साथ संपर्क जो है वो बरकरार रहता, मगर शायद अभी हमारा संपर्क टूट गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बताया कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 21 अगस्त 2026 तक 72 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है। कुल प्रवाह में से विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा का हिस्सा सबसे अधिक यानी 65.4 अरब अमरीकी डॉलर था। वहीं विदेशी मुद्रा उधार से लगभग 5 अरब अमरीकी डॉलर और बाहरी वाणिज्यिक उधार से लगभग 2.5 अरब अमरीकी डॉलर का योगदान रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 8 जून को अनिवासी जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार में आने वाले विदेशी मुद्रा प्रवाह को कवर करने वाली विशेष यूएसडी आईएनआर विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए लाई गई यह स्वैप सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इस सुविधा को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारण इसे एक महीने पहले ही बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा का प्रवाह हुआ। यह योजना अब विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा के लिए 31 अगस्त 2026 तक खुली है, जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। सिद्धार्थ, आरबीआई का लक्ष्य 80 से 90 बिलियन यूएस डॉलर एकत्र करने का था। इस पर बहुत उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। रुपए की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये कितना, मैं अगर आपसे संक्षिप्त में पूछना चाहूं तो कितना योगदान इसने दिया है?
0: नहीं प्राची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप अभी देखेंगे, आज 21 अगस्त की ये जो फिगर्स जो दी है उसी में 72 बिलियन डॉलर आ चुका है और 80-90 का टारगेट था, लेकिन अब मुझे लगता है जो आरबीआई ने इसको प्री मेच्योरली क्लोज किया है एक महीना पहले, मुझे लगता है जो उनका एम था वो पूरा हो गया है। अब रुपए भी स्थिर, हमारा जो मुद्रा भंडार है वो भी, उसमें भी आप देखेंगे वो 700 बिलियन के ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लगा कि अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
2: Global crude oil prices rose to near 4-week highs as the 60-day US-Iran memorandum of understanding expired this week without a permanent peace agreement. The Strait of Hormuz remains effectively closed with Iran insisting that it will remain shut until Washington meets Tehran's demands, while the U.S. naval blockade in the region remains in place. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has threatened tougher economic sanctions on Iran and its trading partners, raising concerns over tighter oil supplies in the coming weeks. During the week at the International Exchange, Brent crude October futures surged 6.6% to settle at $94.39 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 6.9% to end at $87.06 per barrel.
1: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, जैसे हम मार्केट में वैल्यूएशन देखते हैं तो जो लार्ज कैप में बीएसई इंडेक्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन होती है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 20-22 के आसपास रहता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 32-33 तक रहता है। तो ये नॉर्मल है कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा ही रहता है या फिर अभी ये ओवर वैल्यूएट जोन में ही इनको दिखाता है?
0: नहीं देखिए, दोनों बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप का आप देखेंगे थोड़ा प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा ज्यादा रहता है इन वनस्पत जो बीएससी के आप इंडेक्स को देखेंगे, तो इसको लेके मुझे नहीं लगता कोई बहुत चिंता करनी चाहिए आपको। हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में जब भी आप निवेश करें थोड़ा उनको फंडामेंटली स्टडी कर लें, उनके ऑर्डर बुक, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह ध्यान से देखें, उनकी जो मैनेजमेंट है, तो मुझे लगता है बस उस पर ज्यादा ध्यान दें, बाकी कोई मुझे नहीं लगता चिंता है।
2: Major US stock market indices rose yesterday but ended the week in the red. The Dow Jones Industrial Average advanced 1% and the S&P 500 and Nasdaq Composite each gained 0.4%. However, for the week, the Nasdaq shed 2% and the S&P 500 slipped 1.4% and the Dow fell 0.4%. 9%.
1: सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, आपने सभी के जवाब दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्राची, राजेश, आप दोनों को भी धन्यवाद।
2: थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices declined for the second consecutive week. Sensex and Nifty slips around 0.5%. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 11 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत ये वो जगह है, ये वो प्रोग्राम है जहां पर सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में एक नई रूह पैदा हुई थी, एक नया जश्न का माहौल था, एक नए तरीके की फिल्में बन रही थी। ये वो दौर था जिसको आज भी हम उसी तरीके से याद करते हैं और ये दौर 1945 से लेकर तकरीबन 1965 के आसपास का माना जाता है और इस दौर में जो फिल्में बनी वो मील का पत्थर साबित हुई। उन्हीं फिल्मों में से हम कुछ चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इस महफिल में सबसे पहला नगमा विजय भट्ट साहब के निर्देशन में बनी फिल्म बैजो बावरा से। यह फिल्म आई थी 1952 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था बेहद खूबसूरत गीतकार शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद साहब का। इस फिल्म के ज्यादातर नगमे शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे और ये जो नगमा है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सबसे पहला नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में और इस फिल्म में जिन लोगों ने अभिनय किया था उनमें मुख्य कलाकारों में भारत भूषण, मीना कुमारी, सुरेंद्र, मनमोहन कृष्ण वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत।

तो गंगा की मौज में जमुना का तारा, बेहद खूबसूरत यह नगमा फिल्म बैजू बावरा से, यह फिल्म आई थी 1952 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत में, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत यानी गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमों के साथ हाजिर है। तो आए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत है संगम फिल्म से। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में खुद राज कपूर साहब, वैजयंतीमाला, राजेंद्र कुमार और इफ्तिखार राज मेहरा, नाना पालेसकर, ललिता पवार वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। ये फिल्म राज कपूर साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इसे ज्यादातर राज कपूर साहब की शानदार और प्रसिद्ध रचना भी माना जाता है, क्योंकि ये उनके सबसे अच्छे कामों में से एक है। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकेश साहब और वैजयंतीमाला की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। संगीत है शंकर जयकिशन साहब का और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल सी विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के

सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

लता जी और मुकेश साहब की इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार आपके साथ रहेंगे मंजू। कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिस्से के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित युद्धाभ्यास उदारा शक्ति 2026 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक पूरी की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन दोनों देशों में भारतीय वायुसेना की तैनाती, उसकी संचालन की पहुंच, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारियों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। तो मेरी कहानी का वो किरदार हो जो इसे पढ़ने लायक बनाता है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है राग पहाड़ी और इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। आवाज भी उन्हीं की है। तो आइए सुनते हैं कहानी राग पहाड़ी।

पहाड़ों में गूंजा राग बसंत बहार, कुसुम ने सूटकेस सीट के नीचे रखी। दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस सही समय पर रवाना हुई। इस वक्त उसे अपने दिल की धड़कन रेलगाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, लेकिन नजरों के सामने नजारे नहीं बीते दिनों की झांकियां तैरने लगी। अतीत के झरोखों से 9 साल पहले का लम्हा लम्हा नजर आने लगा। कहने के लिए कुमाऊं का वह पहाड़ी गांव छोटा सा था, पर कुसुम का सारा संसार उसमें समाया था। स्कूल, सखियां, संगीत, सबसे खास उसका बेस्ट फ्रेंड सौरभ। पगडंडियों पर हंसते खेलते स्कूल जाना, लौटने पर कभी देवदार और साल के पेड़ों की ओट में लुका छुपी खेलना, तो कभी झरने के किनारे रेडियो रेडियो का खेल रचाना। वादियों में उनकी खुशियां गूंजती थी। कुसुम और सौरभ को पहाड़ों से टकराकर लौटती उनकी आवाज की गूंज सुनना बहुत पसंद था। वह गीत सुनाती, राग पहाड़ी उसका सबसे पसंदीदा राग था। सौरभ रेडियो संचालक की अदायगी करता, कभी क्लासरूम में सिखाई गई कविता की पंक्तियां दोहराता, तो कभी अपने मन से गढ़ी हुई तुकबंदी सुनाता। धरती के साथ जब तक रहेगा नब, कुसुम का साथ देगा तब तक सौरभ। कुसुम की आवाज की स्वर लहरिया और छल छल बहते झरने की अटखेलिया। किशोरावस्था की कच्ची धूप में आत्मीय रिश्ते पक्के हो रहे थे।

लेकिन 9 साल पहले की वह घटना अभी भी भुला नहीं सकी थी। पापा ने रातों रात गांव छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया। 12 साल की कुसुम के मन पर मानो कोई बिजली सी गिरी। अलबत्ता वह जानती थी कि अगर पापा ने यह फैसला लिया है तो उसके पीछे खास वजह जरूर थी। पापा सत्य प्रताप भारद्वाज गांव के विकास कार्यों में सिर्फ इसलिए सक्रिय नहीं थे कि वे सरकारी विभाग के प्रमुख इंजीनियर थे, परंतु वह गांव उनके पुरखों का बसाया हुआ था। बचपन के मित्र राजदीप पाराशर उस गांव के मुखिया थे। भाभी संगीता ने कुसुम को मुंह बोले बेटी माना था। उसे बचपन से संगीत की तालीम भी देती थी। यही कारण था कि कुसुम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। सत्य प्रताप ने अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव के हितार्थ लिया। विकास कार्यों के साथ साथ वे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते थे। बतौर मुखिया राजदीप पाराशर उन तमाम परियोजनाओं को अपने हाथों में लेते थे। बात उस वक्त की है जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहां 5 सितारा हिल रिसोर्ट बनाने के लिए राजदीप को प्रस्ताव भेजा। इसके लिए सरकारी अनुमति की दरकार थी। सत्य प्रताप ने इसकी समीक्षा की और प्रारंभिक मंजूरी दे दी, लेकिन परियोजना के 3 महीने के बाद उस पर रोक लगा दी। कहा, राजदीप, आवंटित की गई जमीन से 3,000 वर्ग फीट पर अधिक तुमने निर्माण काम किया है। वह भूमि खेत की जमीन है। नियम के अनुसार यह अतिक्रमण के वर्ग में आता है। नक्शे के हिसाब से तुम्हें इसमें सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए निर्माण काम रोका गया है। यार, रिसोर्ट में मिनी गोल्फ कोर्स को जोड़ने के लिए यह काम करना पड़ा। गोल्फ टूरिज्म को आजकल दुनिया में कितनी तवज्जो मिल रही है। जरा सोचो यार, इस रिसोर्ट में अगर मिनी गोल्फ कोर्स जुड़ जाएगा तो हमारे गांव में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। सुनो, अगर गोल्फ कोर्स जोड़ना चाहते हो तो अलग से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। मेरी मानो तो झील के उस पार गांव में गोल्फ कोर्स के लिए आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। एक अलग से अर्जी दे दो। भाई सत्या, थोड़ा एडजस्टमेंट करवा दो ना। घी गिरेगा तो हमारी थाली की खिचड़ी में ना। हमारे गांव के लाभ को छोड़कर दूसरों के बारे में क्यों सोचे यार। भाई राजदीप, यह गांव हम दोनों के पूर्वजों ने मेहनत और समर्पण से बनाया था। आज हम दोनों में इतना सामर्थ्य है कि अपना योगदान आसपास के गांवों के विकास के लिए भी कर सकते हैं, ताकि उस गांव के लोगों को भी रोजगार के नए आयाम मिले। देख यार, संसाधनों और मजदूरी की बात करें तो यहां रिसोर्ट बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान और फायदेमंद रहेगा। समाज कल्याण तो बाद में भी होता रहेगा। राज, पिछले इन सालों में तुम कितने बदल गए हो। यार देख, यही वक्त है तुम और मैं मिलकर दौलत कमा सकते हैं। देख राज, दोस्ती अपनी जगह है, कायदे कानून अपनी जगह। भाई सत्य प्रताप, मैं तो दोस्ती के बारे में भी सोच रहा हूँ, दोस्त की बेटी के बारे में भी। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी कुसुम और अपने बेटे सौरभ में कोई अंतर नहीं समझता। मेरे घर उसका आना जाना, संगीता से उसका इतना लगाव, मुझे कोई एतराज नहीं है। सोचना तो तुम्हें है कुसुम के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। धन राशि कमा लोगे तो उसका भविष्य सुरक्षित कर पाओगे। राज, मेरी दुख तिरक पर हाथ मत रखो। जब सूत्रों से मुझे पता चला कि तुमने पिछले कई परियोजनाओं में पैसों की गफलत की है, मैंने यकीन नहीं किया था, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कानून के दायरे में रहो। दोस्ती भुलाकर कानूनी कार्यवाही करने पर मुझे मजबूर मत करो। इससे राजदीप का गुस्सा हद पार कर गया। मौका देखकर उसने गंदी चाल चली

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सत्य प्रताप जब नैनीताल गए, तब राजदीप ने उन तमाम लोगों को बुलाया जिनके खेतों की जमीन निर्माणाधीन रिसोर्ट में आ रही थी। मुंह मांगे दाम पर जमीन खरीद ली। दूसरे दिन सरपंच की बैठक बुलाई। गांव के लोग भी उपस्थित हुए। इनमें ज्यादातर राजदीप के आदमी थे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इन दिनों क्यों सत्य प्रताप अपने गांव के विकास परियोजनाओं में रोड़े डालते हैं, जानबूझकर नीति नियमों का वास्ता देकर काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। राजदीप ने भी ढोंग रचा, बोला, हां, मेरे सत्या से इस पर जब बात हुई थी तब वह आसपास के गांवों को ज्यादा तवज्जो दे रहा था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, कहीं इसमें उसका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है। प्लान के मुताबिक कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सत्य प्रताप के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। यह सब जब हो रहा था तब कुसुम सौरभ के साथ पढ़ाई कर रही थी, राजदीप के घर पे थी। नारेबाजी सुनकर वह सहम गई। संगीता ने खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे लगा दिए। बच्चों का मूड बदलने के लिए वह बोली, सौरभ, आज कौन सी कविता सीखी स्कूल में, चलो दोहराओ तो। उसके बाद कुसुम एक अच्छा सा गीत राग पहाड़ी में सुनाएगी। सौरभ ने टेबल पर रखी चम्मच को अपना माइक बना लिया। दोनों के सामने बैठकर सुनाई अपनी कविता। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। दो लोगों की ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। कुसुम ने भी गीत सुनाया। फिर संगीता बोली, कुसुम चलो जल्दी खाना खा लो और सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है ना बेटा।

कुसुम को कमरे में सुलाकर संगीता बाहर आई। सौरभ ने पूछा, माँ सत्यप्रताप अंकल और पापा इतने अच्छे दोस्त है ना, मगर आज पापा ने उनका बचाव क्यों नहीं किया? संगीता बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वक्त और हालात के साथ रिश्तों में बदलते समीकरण को इस वक्त समझ नहीं पाओगे। हर रिश्ता एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरता है, कभी दौलत तो कभी किस्मत हर संबंध को आजमाती है। अगर रिश्ता सच्चा हो तो उस अग्नि परीक्षा में पास हो जाता है और संबंध और भी पक्का हो जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम भी जाकर सो जाओ। राजदीप घर लौटे। संगीता ने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है, अचानक ये दौलत कमाने की इतनी भूख क्यों? अरे तुम दोनों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। अरे सुनिए, नैतिकता को दांव पर लगाकर कमाया गया धन हमारे किस काम का? अब सौरभ भी बड़ा हो रहा है, आपकी करने का उस पर भी तो असर होगा। संगीता, बहती गंगा में हाथ धोने में अकलमंदी है, वरना तब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग जाएगी खेत। संगीता ने बस आंखें बंद कर ली और दोनों बच्चों के बारे में सोचने लगी। वहां सत्यप्रताप भी कुसुम के बारे में सोच रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली से आए पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव दिया, पहाड़ी पारिस्थितिकी संतुलन समिति में उन्हें सलाहकार के रूप में नामांकित किया गया था। इस नए पदभार को संभालने के लिए उन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। सत्यप्रताप कुसुम के बारे में सोचने लगे और सालों से राजदीप की दोस्ती उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। दिन भर इस धर्म संकट से जूझते रहे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से कहा कि कुछ सोचकर बताता हूं। वे अपने गांव लौट आए। सत्यप्रताप ने कहा, भाभी जी कुसुम स्कूल से आ गई क्या? हाँ भाई साहब, संगीत का रियाज कर रही है। तभी राजदीप ने व्यंग्य में कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी के हमारे घर अच्छी देखभाल होती है। सत्यप्रताप कुसुम को लेकर घर तो आए, पर पिछले दो दिनों में हुई घटनाक्रम के बारे में सुना, रात भर चिंतन किया। राजदीप का बदलता रुख और दौलत कमाने की अंधी दौड़ अब मित्रता की आहुति ले रही थी। उसके परिवार से कुसुम की आत्मीयता आगे चलकर कहीं बोझ न बन जाए, यही सोचकर सत्यप्रताप ने फैसला किया। दो फोन कॉल लगाए, अपने आला अधिकारियों से बातचीत की। अगली सुबह कुसुम को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाते वक्त पापा ने कहा था, पता है कुसुम, भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी थी? पूरी तन्मयता से जिस राज्य को संभाला था उसे छोड़कर नई द्वारिका नगरी क्यों बसाई थी? बेटा, क्योंकि जिस प्रजा से वो इतना प्रेम करते थे वे उनकी रक्षा करना चाहते थे, पर प्राणों से प्यारी जनता को रण में झोंक कर उनका अहित मंजूर नहीं था। इस वक्त तुम छोटी हो, इस वक्त शायद तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आएगा, लेकिन कुसुम वक्त आने पर तुम जान जाओगी। इतना याद रखना बेटा कि जब बात सिद्धांतों की हो तो समझौता नहीं किया जाता। ट्रेन में बैठी बैठी कुसुम अपने सिद्धांतवादी पापा की बात समझने लगी थी।

परिस्थितियों में मजबूर होकर पापा ने गांव छोड़ा था, कमोबश कुछ ऐसे ही हालात कुसुम की जिंदगी में आ गए थे। वरना दिल्ली में सबसे लोकप्रिय टेलीविजन रियलिटी शो को बीच में छोड़कर वह अपने गांव वापस जाने के बारे में क्यों सोचती। पापा की कही बात मन में गूंजने लगी, किस्मत जब एक दरवाजा बंद करती है तब कुदरत हजार नई खिड़कियां खोल देती है। बंद दरवाजे की दहलीज पर सर पीटने के बजाय जरूरत है खुले झरोखों की ओर रुख मोड़ने की।

कुसुम के ख्यालों का सिलसिला अचानक टूटा। काठगोदाम स्टेशन आ गया था। अपनी सूटकेस और हैंडबैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। वक्त ने कैसी करवट ली है ना। 9 साल पहले जिस गांव को छोड़कर गई थी, आज वहीं वापस लौटी है। गांव तक जाने के लिए टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। वह गाड़ी में बैठी। 9 साल बाद फिर से पहाड़ों की आगोश में

अपने रेडियो स्टेशन की ओर से आयोजित राग पहाड़ी उत्सव में भाग लेने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। कुसुम सोचने लगी, अगर टेलीविजन पर उस रियलिटी शो के आधार पर उसे गाने के लिए निमंत्रण मिला है तो बात अजीब है ना, क्योंकि जिस शो की वह टॉप 5 प्रतियोगी में शुमार हो चुकी थी उसी शो में वह बदनामी का शिकार भी तो हुई थी। सोशल मीडिया में लोग उसे ट्रोल करने लगे थे। इसके बावजूद कुमाऊं के उस रेडियो स्टेशन से उसे उत्सव में लाइव गाने के लिए बाइज्जत बुलाया गया। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ हैरानी हुई, क्योंकि टेलीविजन पर शो के दौरान बतौर निर्णायक आए उस सेलिब्रिटी ने रिहर्सल के दौरान कुसुम से बदतमीजी की थी। कुसुम ने आयोजकों से उस सेलिब्रिटी के खिलाफ शिकायत दायर करने की अपील की। प्रतियोगिता का फिनाले नजदीक था, शो के टीआरपी पर असर होने का डर था, तो कुसुम को खामोश रहने की सलाह दी गई। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती, उस सेलिब्रिटी ने अपने चैनल पर कुसुम का चरित्र हनन किया, कहा कि जीतने के लिए प्रतियोगी ने उस पर डोरे डाले थे। लाखों फैन फॉलोइंग वाले चैनल पर कही गई यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पापा की मौत के बाद कुसुम ने अपनी गायकी को जीवन का आधार बनाया था, लेकिन इस घटना ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सहमी हुई कुसुम नहीं जानती थी कि कहां जाए। पापा की बात याद आई, किस्मत एक दरवाजा बंद करे तो कुदरत

हजार खिड़कियां खोल देती है। उसी रात ईमेल पर राग पहाड़ी उत्सव के लिए आमंत्रण आया। स्टेशन से पिकअप और सर्किट हाउस में रहने की व्यवस्था का मैसेज भी था। टैक्सी रुकी, ख्यालों का सिलसिला भी थम गया। उसी झरने के किनारे सर्किट हाउस था। 5 साल पहले वहां भूस्खलन की खबर टीवी पर देखी थी। उसके दिल में मानो कोई भूचाल आ गया था। वो कितना रोई थी। इस वक्त वो गांव का नजारा देख रही थी। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। कमरे में सामान रखकर कुसुम रिसेप्शन में आई। मैनेजर ने बताया कि शाम को राग पहाड़ी उत्सव की टीम उससे मिलने आएगी। कुसुम ने अपनी शॉल ओढ़ी, झरने के पास टहलने गई। बचपन की सारी खूबसूरत यादें पलकों पर आरोहित होने लगी। बचपन का हर पल संगीता आंटी और सौरभ की सुखद स्मृति से सजा था। दिल्ली जाने के बाद पापा के कहने पर उसने सौरभ से संपर्क तोड़ दिया था। न अपना पता या नंबर उसे दिया, न कभी उसे कॉल किया। लेकिन जब टीवी पर लैंडस्लाइड की खबर आई थी तो लैंडलाइन पर उसने फौरन फोन किया था, लेकिन पता चला कि वह नंबर अस्तित्व में नहीं है। कुसुम की नजर इस वक्त देवदार के उस पेड़ पर पड़ी जिस पर सौरभ ने लिखा था, जब तक रहेगा धरती के संग नभ, तब तक साथ रहेगा कुसुम संग सौरभ। सौरभ को याद करके इस कदर सस्कियां भरने लगी कि पीछे से जब किसी ने उसका नाम पुकारा, उसे सुनाई नहीं दिया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुसुम ने मुड़कर देखा तो लंबे कद का एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कुसुम की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, ठीक से उसको देख नहीं पाई। उस नौजवान ने अपने रुमाल से कुसुम के आंसू पोंछे, रूहानी आवाज में बोला, चाहे जितनी तेज हो हालात की आंधी, कुसुम कभी आंसू नहीं बहाती। बुत से बैठी कुसुम टकटकी लगाकर उसे देख रही थी। हौले से पूछा, सौरभ?

जी हाँ मैडम जी, राग पहाड़ी उत्सव में आपका स्वागत है। इस बार आंसुओं की धारा खुशी की थी, गले से आवाज निकल नहीं रही थी, बस अपनी उंगलियां सौरभ के चेहरे पर घुमा रही थी। सिसकी भरने के बाद गला साफ किया और पूछा, ये कोई ख्वाब तो नहीं है? 9 साल का अंतराल बुरा सपना जरूर था, वह बीत गया है कुसुम। अब तुम और मैं आमने सामने हैं, यह इस लम्हे की हकीकत है। सौरभ, तो इस उत्सव में भाग लेने के लिए तुमने मुझे न्योता भेजा है? देश की उभरती हुई गायिका का स्थानीय रेडियो के क्रिएटिव हेड सौरभ पराशर की ओर से हार्दिक स्वागत है। सौरभ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कैसे मिला? 9 साल से शिद्दत से तुम्हें तलाशता रहा, अचानक टीवी पर रियलिटी शो में तुम्हें देखा, तुम्हें फॉलो करता रहा। तो फिर तुमने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में भी, तो मुझे अपनी कुसुम पर यकीन है, आदर्शवादी पापा की सिद्धांतवती बेटी कुसुम शो छोड़ सकती है पर समझौता नहीं कर सकती। कुसुम की आंखें फिर से भर आई। सौरभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें पल पल याद करने का यही सिला है, लंबी तपस्या के बाद शुभ फल मुझे मिला है। सौरभ, हालात ऐसे थे कि मैं तुम्हें संपर्क नहीं कर पाई, मगर बताओ संगीता आंटी कैसी है? और अंकल, माँ तुम्हें देखने के लिए बेताब है। पता है तुम्हें कुसुम, रेडियो स्टेशन की वे अब सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। अरे वाह, सीरियसली? तो मुझे बताओ कि ये नाम राग पहाड़ी उत्सव उन्हीं ने दिया होगा। ओ मैडम, सुनना चाहती हो तो सुनो, राग पहाड़ी उत्सव यह नाम उनके बेटे ने दिया है, यानी मैंने, क्योंकि तुम्हें ये राग बहुत पसंद है ना? कुसुम मुस्कुराकर बोली, ये राग तुम्हारे बगैर अधूरा था सौरभ। सौरभ ने कुसुम का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर कुसुम ने अचानक पूछा, अच्छा बताओ अंकल कैसे हैं? उसने जवाब दिया, कुछ साल पहले यहां भूस्खलन हुआ था कुसुम, बहुत सारे मकान बह गए थे, पिताजी भी उस वक्त, आई एम सो सॉरी, मगर पता है उस वक्त कुसुम, माँ के साथ मैं रेडियो स्टेशन में था। कुसुम सौरभ से लिपट गई, भगवान की दया है कि तुम ठीक हो सौरभ, पता है उस वक्त मैंने टीवी पर यह खबर देखी थी, मैंने फोन भी लगाया था, मैं कितनी डर गई थी। कुसुम, याद है तुमसे मैंने वादा किया था, 1000 साल तक कुसुम और सौरभ साथ रहेंगे, वक्त के दरिया में बस 9 साल बह गए हैं, अभी तो सदियों का साथ बाकी है, राग पहाड़ी में तुम्हारी आवाज का गूंजना बाकी है, मेरे दिल के आंगन में तुम्हारा खिलखिलाना बाकी है, बसंत बहार में बगिया का महकना बाकी है।

ये थी कहानी राग पहाड़ी, आपको सुना रही थी शीतल शाह, और ये कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई थी। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर ईमेल कीजिएगा fmgoldchannel@gmail.com पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हित की कसौटी पर खड़ा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार और रोजगार तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन

एगुलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ, जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय के विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया, जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर बंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज के साथ।

महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम गीत गाया पत्थरों ने, संगीत था रामलाल का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वी शांताराम ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी जितेंद्र और राजश्री ने और ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। अगला गीत रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम लव मैरिज और आवाजें थी लता मंगेशकर और रफी साहब की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को निर्देशित

किया था सुबोध मुखर्जी ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और माला सिन्हा ने। अगला गीत रफी साहब की आवाज में आप ही के लिए।

चौदहवीं का चांद फिल्म से रफी साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गीत। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पतंग से। इस गीत का संगीत है चित्रगुप्त का और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

101.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 2 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में।

फिल्म उजाला से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में सुना आपने ये गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक क्राइम फिल्म थी जिसमें शमी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने अभिनय किया था। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था नरेश सहगल ने और इस फिल्म का संदेश यही था कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। और अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम पारसमणि और आवाज थी रफी साहब और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार असद भोपाली। ये फिल्म 1963 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक संगीतमय फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने और ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही थी और इस फिल्म को मायामणि शीर्षक से 1964 में तमिल में रिलीज किया गया था। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी, मन्ना डे और आशा जी की आवाज में, फिल्म उस्तादों के उस्ताद से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश के पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल ग्रीक के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरा पेट्रिटिस से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दिलट्टी से भी टेलीफोन पर बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा के तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत एमवी ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में से 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह आयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुइलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम की अंतर्गत हुआ जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत और उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। श्री एगुवेरा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच 66 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद को चीन की लियू शेंग शू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित किया। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हार कर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे, किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर पंजू। वक्त हुआ है 2:12:03। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

प्यार में ऐसा ही होता है, ना घर चाहिए होता है ना ही दुनियादारी चाहिए होती है, बस साथी की एक नज़र ही काफ़ी होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि आशियाने तो ज़मीन पर बनते हैं, दीवानों की दुनिया तो दिल से बनती है, जहाँ पर ना शर्तों की जगह होती है और ना ही कोई शिकायत होती है, बस एक साथ होता है जो ताउम्र साथ चलता है। अगला गीत आप ही के लिए।

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तो मैंने ये जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है।

छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मुझे खींच ही लेती है हर बार उसकी मोहब्बत, मुझे खींच ही लेती है हर बार उसकी मोहब्बत, वरना बहुत बार मिली हूँ आखिरी बार उससे। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, स्वादिष्ट मिलो 1 MHz पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। 2:38 हुए हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत आप ही के लिए।

0: के चले।
1: वैसे ये बात तो सच है कि प्यार का जहाँ बसाने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, प्यार और विश्वास होना चाहिए और तैयार हो जाती है एक अलग दुनिया। यकीन ना हो तो करके देखिए। अगला गीत आप ही के लिए।

वाकई मौसम मस्ताना तो है पर रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी कि अपनी रात की हम सफर के साथ, और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। अगला गीत आप ही के लिए।

अगर बात सपनों तक पहुंच गई है तो प्यार का मामला काफी आगे निकल चुका है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्यार का इजहार कर लिया जाए। अब जब मौसम रोमांटिक हो चला है तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और रोमांटिक गीत सुन लिया जाए।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों

0: आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इनके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद GRSE भवन में MSME के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बगान सुपर जायंट्स के बीच फुटबॉल ड्यूरेंट कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत MV ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमा और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां वक्त हुआ है इस वक्त 3:11:24। आप हैं हमराही कार्यक्रम में रूपा धवन के साथ, और आज हम कौन से गीत सुनेंगे और क्या उनकी भाषा होगी, क्या उनकी भावनाएं होंगी जानेंगे। लेकिन इस गीत के बाद शायद इस गीत से ही आपको कुछ पता चल जाए कि आज हम किस शब्द पर या किस भाव पर आपको गीत सुनाएंगे हमराही कार्यक्रम में। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और लीजिए, आ रहा है पहला गीत आपकी ओर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

दिल की जमी पर जब यादों की फसल बोगी, दिल की जमी पर जब यादों की फसल बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना ही रोगे। दिल पे बहुत मुश्किल है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। किसी और को क्यों देखें ये आंखें मेरी, जब दिल पर लिखा है नाम सिर्फ तेरा। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम हमराही में आपको गीत सुनवाएंगे दिल शब्द के ऊपर, दिल की गहराई और जज्बात। दोस्तों, कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि दिल की गहराई क्या है, दिल के जज्बात क्या हैं। इनमें जितना आप उतरेंगे उतना ही आप डूबते चले जाएंगे। रात की इस बेहद खूबसूरत खामोशी और इस खामोश सफर के साथ ही आप और हम सुन रहे हैं दिल की धड़कनों को, कार्यक्रम हमराही के जरिए। रात के इस पहर में जब शहर की हलचल थम जाती है, तब एक चीज है जो सबसे ज्यादा बातें करता है, दिल। रात के सन्नाटे को चीरती हुई दिल की धड़कनों के साथ आज हमराही में सुनेंगे दिल शब्द पर फिल्मी युगल गीतों को, जिन्होंने दो दिलों को जोड़ा है और शायद दो दिलों के मिलने का कुछ गहरी वजह भी हो सकती है। तभी तो दो दिलों की मुलाकात होती है, और जब दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तब एक दूसरे को दोनों तड़प तड़प कर कुछ इस तरह से पुकारते हैं,

ये दिल कितना पागल है, हर पल तेरे ही ख्वाब ये बुनता है, रहता है मेरे सीने में, धड़कन पर तेरी ही सुनता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो लीजिए जनाब, आपकी और हमारी मुलाकात का सिलसिला बरकरार है, जारी है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपने ही दोस्त रूपा के साथ, और आज हम बातें कर रहे हैं दिल की, और दिल की धड़कनों से जुड़े गीत आपको हम सुनवा रहे हैं हमराही कार्यक्रम में।

जी हाँ, तस्वीर जब दिलों पर उभरती है तो अपनी अजीज को कुछ इसी तरह से याद करती है। और अगर बात करें नज़र की, तो नज़रें क्या कहती हैं? दिल की नज़र जब दिल से मिलती है तब क्या असर होता है?

साथियों कहते हैं दिल बहुत जिद्दी होता है, पर जब इसे किसी से मोहब्बत होती है तो ये बहुत मासूम हो जाता है।

रात की गहराई में छुपाए हुए दर्द जज्बात भी बाहर आने लगते हैं, और ऐसे में जब किसी की याद आए तब रफ़ी साहब, मुकेश साहब, महेंद्र जी और लता जी की आवाज़ों से सजा हुआ जब गीत सुने हम, तो इससे बेहतर तो कोई मरहम हो ही नहीं सकता। संगम फिल्म का भी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश साहब, महेंद्र जी और लता जी के स्वर में। ये गीत आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

साथियों, रात के इस पहर में दिल अक्सर पुरानी यादों के पन्ने पलटता है, जिन्हें हम टूटकर मोहब्बत करते हैं। उनके बिना जब रहना पड़ता है तो दिल संभाले नहीं संभलता। कुछ ऐसा ही जज्बा है इस प्यारे से गीत में, जिसे हम शामिल कर रहे हैं फिल्म रात से। लता जी और मुकेश साहब की आवाज से सजा ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जनाब, समय बीतता है, जमाना बदलता है, लेकिन दिल की भाषा हमेशा एक सी रहती है। चाहे 70 का दौर हो या आज का जमाना, जब दो दिल आपस में बातें करते हैं तो धड़कनें संगीत बन जाती है। अगला गीत दिल की पुकार के नाम, दो रास्ते फिल्म का ये गीत आपके लिए, रफी साहब और लता जी के स्वर में।

आइए चलते हैं अब रेट्रो दौर में, जहां मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले के उस क्लासिक युगल गीत की तरफ जिसने दिल चुराने का सभी को हुनर सिखाया। यादों की बारात का ये गीत आशा भोसले और रफी साहब के स्वर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी का एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद GRSE भवन में MSME के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारतीय क्रीडांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत MV ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमा और 1 बांग्लादेश का नागरिक है। यह पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हिस्से राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सहयाद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस बीच कोच पुलेला गोपीचंद ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में शानदार उपलब्धि के लिए दोनों खिलाड़ियों की प्रशंसा की और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस जोड़ी ने एक साथ खेलते हुए काफी प्रगति की है। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। वेनेगर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives, aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India as an

जब आप दुखी होते हैं तो जीवन आप पर हंसता है, और जब आप खुश होते हैं तो जीवन आप पर मुस्कुराता है, लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो जीवन आपको सलाम करता है। जी हाँ, सलाम करते हैं हम भी, और नमस्कार करते हैं आप सभी को आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारे जुड़े सभी श्रोताओं को, हमारे सभी साथियों को, और स्वागत करते हैं आप सभी का तहे दिल से। ये समय ऐसा समय है जब रात तो बीतने को है और दिन की जो उजली लाली

है वो आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि कब चंदा अपने रास्ते पर जाए और सूरज अपने रास्ते पर आए, एक सुनहरे रथ पर तैयार होकर। तो इसी समय को मद्देनजर रखते हुए हम और आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरुणिमा की। अरुणिमा, जो सुनहरी किरणों से सजा रथ आपके लिए तैयार रहता है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, रूपा है आपके साथ और आप हैं हमारे साथ। तो इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए, बातें होंगी ढेर सारी और गीत भी हम सुनेंगे ढेर सारे।

साथियों, सकारात्मक सोच आगे बढ़ने का एक बेहद प्रेरणादायी सबब बन जाती है। जब कुछ नहीं सोचता तब हमारे साथ हमारे सकारात्मक विचार चलते हैं। अरुणिमा में सकारात्मक विचारों के साथ सुनेंगे कुछ चुनिंदा गीतों को आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। जाली नोट फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

जिंदगी में मुश्किलें हमारा इम्तिहान लेने आती हैं, हमारी राहें रोकने नहीं आती, क्योंकि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और ताकत से परिचित नहीं होते। पर जब हमें परेशानियां घेरती हैं, तब अपने भीतर छुपी ताकत से हम परिचित होते हैं। इसीलिए तो किसी ने खूब कहा है कि हमें इम्तिहान से घबराना नहीं है, बल्कि हंसकर हर तूफान का सामना करना है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है इस वक्त 4:33 और 54 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में अपनी ही दोस्त रूपा के साथ। तो दोस्तों, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जब जिंदगी है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो क्यों ना जिंदगी को हंसते हंसते बिताया जाए और गाते गुनगुनाते गीतों के साथ इस सफ़र को और भी मजबूत बनाया जाए, खुद को भी और दूसरों को भी जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं।

अपनी हार से जब हम सबक लेते हैं तो हर गलती हमारे लिए एक खाली पन्ना लेकर आती है। उस पन्ने पर हम एक नई इबारत खड़ी कर सकते हैं, यानी जो गलतियां हमने की उनसे हम सबक लेकर एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं। तो क्यों ना इन गलतियों से हम आज ही सबक लें और आज ही हम एक नई शुरुआत करें।

और यकीन मानिए, जब अपनी गलतियों से हम सबक लेकर एक नई शुरुआत करेंगे तो हमारी सफलता चारों तरफ अपनी गूंज सुनाई देगी, हमारी सफलता चारों तरफ अपना शोर मचा देगी। और ये ऐसा शोर होगा जब हर तरफ से हमारे लिए तारीफ हो रही होगी, हमारा प्रोत्साहन हो रहा होगा। गिरते को तो सभी गिराते हैं, लेकिन जो गिरकर उठता है उसको कोई कोई सराहता है और वही पहचान दुनिया में बनाता है। हमारा जीवन और सुख दुख धूप और छांव की तरह हमारे साथ साथ चलते हैं। आशा और निराशा का नाम भी जिंदगी है। इसे गम के सागर में डुबोने की बजाय हमें छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो देखिएगा जिंदगी कितनी हसीन लगेगी और ये बहारें और भी हमारे जीवन के साथ जुड़ती चली जाएंगी।

रात कितनी भी गहरी हो, भोर होने से रोक नहीं सकती। रुकावटें कितनी भी हों, तेरी राह रोक नहीं सकती। पंख समेट कर बैठना छोड़, खुले आसमान में उड़ना सीख। तो खुद अपनी तकदीर है, हर गिरते कदम से उठना सीख। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमें हर गलती से एक सबक लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहता है, और उसी हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन सुख दुख धूप और छांव का खेल है। आप जुड़े हुए हैं अरुणिमा में अपनी दोस्त रूपा के साथ, और आप सुन रहे हैं अरुणिमा कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

हमारे छोटे छोटे प्रयास चाहे वो धीमी गति से हो, रुक जाने से तो कहीं बेहतर है। हर छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। अरुणिमा का सफर यहीं तक। रूपा को अनुमति दीजिए, आपसे थोड़ी देर में फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी में। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, तब तक के लिए विदा लेती है रूपा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जेआरएसई भवन में एमएसएमई के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस रायन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर से ये दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक था। जहाज उड़ीसा से करीब 72,000 मेट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर रवाना हुआ था। मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में नागरिकों पर पाकिस्तानी बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। संगठन ने इस घटना को राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। भीषण शक्तिशाली तूफान मोक हवाई की ओर बढ़ रहा है। इससे बिग आइलैंड में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां के लोग अभी भी तूफान लाला के कारण आई भीषण बाढ़ और तेज हवाओं से हुए नुकसान से जूझ रहे हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंगशू और टैंग निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will undertake a 2-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jaishankar will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विल पार्टिसिपेट इन द भूमि पूजन सेरेमनी इन कोलकाता।

साथियों, सपनों की उड़ान आसमान तक लेकर तो जाएगी, हर मेहनत की रोशनी हर अंधेरे को मिटाएगी। हर सुबह विश्वास जगाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेहनत ही हमें मंजिल दिलाएगी। जी हाँ, मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद यकीनन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता तो है, साथ ही हमें एक नई दिशा भी प्रदान करता है। स्वागत है आप सभी का भोर सुहानी कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम जुड़ा है एक नई ऊर्जा के साथ, आपके साथ, जिसे आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो जब हमें नई दिशा प्रदान करता ही है ईश्वर, तो क्यों ना इस खूबसूरत और बेहतरीन सुबह में भी आज हम स्मरण करें उस परमात्मा का जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। भोर सुहानी में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और सुप्रभात।